4.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 होने को है। इसी के साथ हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस ईक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

0: ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आपने रविंद्र जैन व साथियों के स्वर में ये भक्तिपूर्ण रचना सुनी। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पोडवाल की आवाज में ये भजन।

अनुराधा पोडवाल के गाए इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए आपको आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दे दें। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती किसानी। विषय होगा कृत्रिम गर्भाधान से लाभ। सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। चिंतन सुनिए सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर सुनिए हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत

चिंतन सुनिए सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर सुनिए हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ। कवि होंगे केवल प्रसाद द्विवेदी। फिल्म संगीत होगा 7:30 पर, शाम 5:40 पर और रात 8:15 पर। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें आज सुनिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत। लोकरंग कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे उमा शंकर नामदेव। समय रहेगा सुबह 9:00 का। सुबह 9:30 पर एक ही संगीतकार कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रसिद्ध संगीतकार आनंद मिलन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी नगमे। 10:00 भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी।

0: सुबह 10:05 पर सबरम कार्यक्रम में सुनिए मिश्रित संगीत। इसमें सुनिए भजन, गजल, गीत, फिल्मी धुन और फिल्मी गीत। सुबह 10:30 पर सुनिए श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 11:00 से सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश। 11:00 होगा भोपाल केंद्र से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12:00 सुनिए आपकी फरमाइश। बारह बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:00 स्वास्थ्य दर्पण। दिन में 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। शाम 5:00 युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में सुनिए कार्यक्रम सवाल हमारे जवाब आपके का अंक 126 और सुनिए वार्ता वीरांगना रानी दुर्गावती। वार्ताकार हैं रीना चतुर्वेदी और साथी होगी रोजगार सूचना। शाम 6:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी भोपाल केंद्र से। शाम 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में सुनिए लोकगीत। इसमें आज कलाकार होंगे पवन यादव। शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में सुनिए श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल्स और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की और सुनिए वार्ता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वार्ताकार होंगे विनीत कुमार जायसवाल और साथी होगी आज की सीख। रात 10:00 सुनिए श्रोताओं के डाक पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। भोपाल केंद्र से 8:00 सुर्खियों में। दिल्ली केंद्र से रात 9:00 न्यूज एट 9। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर सुनिए पब्लिक स्पीक। ये तो था आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी।
1: भैया देखो अपने किसान भैया गांव में शहरन में सब जगह गैया भैंसियां बहुत ज्यादा पालत हैं। खाए से कि हमें अधिक से अधिक दूध को उत्पादन लेवे के लाने जानवर पालब जरूरी हो जाते। अब ऐसे में हम कैसे अच्छे जानवर अपने

0: घर में रखें, अपने आसपास पड़ोस में अच्छे जानवर पैदा कर सकें। इके लाने हमें जो जानवर जरूरी हो जाते हैं कि कौन सी नस्ल के जानवर अच्छे हैं और अधिक से अधिक दूध देते हैं। जानवर जब हम अपने घर पर रखते हैं या अपने खेतन में रखते हैं या बाड़ी में रखते हैं, तो उतरे पे दो चीजों को ध्यान रखना जरूरी हो जाते हैं, उनकी प्रजनन करावे को। अब हम गर्भाधान कैसे कराएं, ये बात को ध्यान रखना जरूरी होते हैं। अब जब हम अपने गैया भैंसियां पाले हैं, तो हमें जहां पे अपने जानवर रखे हैं उतरे पे उत्तम किस्म के सांड रखबो जरूरी होते हैं। गर्भाधान दो विधियों से करावो उचित है। आजकल कृत्रिम गर्भाधान संसार में सब जगह बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। कृत्रिम गर्भाधान से अपने भैया का अनेक लाभ होते हैं। कैसे, एक सांड से अपने भैया अनेक गांजा या भैंसियन का गाभिन करा सकते हैं। अमेरिका में ये बात को पतो लगाओ गो है, तो एक साल में एक सांड से लगभग 50,000 गायें जो है गाभिन कराई गई। कृत्रिम गर्भाधान के लाने सबसे पहला तो हमें अपने पास के पशु अस्पताल में जहाँ पे वीर इकट्ठो करके रखो जाते है, उतरे पे जाके अपने गैया बछिया कर ले जाएं या भैंस कर ले जाएं या पड़िया कर ले जाएं, जिससे कि वहां पे उन्हें कृत्रिम गर्भाधान कराओ जा सके। कृत्रिम गर्भाधान के लाने हमें अच्छे सांड को वीर इकट्ठो करके अपने पास भी रख सकते हैं। अगर उन भैया के पास हमारे पास सुविधा है तो वे अपने कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। जब जानवर अपने गर्मी पे आते कृत्रिम गर्भाधान करावे के लाने अस्पताल ले गए और उतरे पे पिचकारी के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराओ जाते। जानवर का पतो जब लग जाते कि वो गर्मी पे है, गर्मी पे जब अगर गाय या भैंस आउट है तो वो दूसरे जानवर पे चढ़ने लगते है या रमान लगते है या वो एक योनि से चिपचिपो पदार्थ छोड़ने लगते है, देर देर पेशाब करने लगते है, जिससे कि अपने पंचभैया का जो पतो चल जाते है कि जो जानवर गाभिन के लाने तैयार है। अस्पताल ले जाके ऊखन जब अपन गाभिन कराते हैं तो एक बात को ध्यान रखें कि वो घरे ले आके लगभग 20 घंटा और 24 घंटा तक बांध के रखें ऊखा, जिससे कि वो कृत्रिम गर्भाधान को समय को पूरा हो जाए। नहीं तो अपन ले आए वो छोड़ दो तो जो देसी नटवा अगर फिरत रात है या जो देसी सांड है वे ऊखा क्रास करके उनको वो वीर नष्ट करके या उनकी नस्ल बदल सकते हैं। ऐसे नटवा या ऐसे सांड जो देसी नस्ल के हैं और उनसे पैदा होने वाली नस्ल अच्छी ना हुए तो उन्हें जो है बदिया करा दो चाहिए, जिससे कि वे गाभिन करने वाले जानवर का परेशान ना कर सके। अब जब जानवर गाभिन हो जाते तो उनका अपने भैया का ये बात को पता चल जाते कि जो गाभिन होगा, इस विधि से अपने जानवर में एक तो उत्तम नस्ल के जानवर पैदा होते हैं, दूसरों आने वाली नस्ल जानवर की अच्छी होने लगते है और सांड को जो उत्पादन को समय है वो भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे सांड अगर अच्छी नस्ल के हैं तो वे बूढ़े हो जाने के बाद भी या अगर उनके अंग कोण टूट जाते, मान लो पांव और टूट गए, तो वे जब जानवर पे अगर क्रॉस नहीं कर पाते तो उनको वीर इकट्ठो करके भी बहुत सारी गाय अपनी गाभिन कराई जा सकते हैं। जिससे कि आने वाले समय में अच्छे से अच्छी नस्ल की अपन बछिया या सांड ले सकते हैं। एक बात को ध्यान रखें अपने भैया कि हमेशा अच्छी किस्म की गाय पाले, जर्सी हॉलस्टन फ्रीजर साहिबाल गेरिया अच्छी नस्ल के जानवर पाल के अधिक से अधिक उत्पादन लेके अधिक से अधिक उन्हें मुनाफा मिले।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी, विषय था कृत्रिम गर्भाधान से लाभ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर लक्ष्मी शंकर और रामकिशन चंदेश श्री का है और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।
2: उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवता

देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिवजी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: अभी कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। गायक स्वर था लक्ष्मी शंकर और रामकिशन चंदेश्री का। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन कहा जाता है। 45 विश्वविद्यालयों की मानद उपाधि विभूषित डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन और उनके विचार किसी राह की तरह हैं, जिन पर चलते हुए उन्नत जीवन ही नहीं उन्नत राष्ट्र का निर्माण संभव है।

0: वे एक महान वैज्ञानिक होते हुए भी सामाजिक जीवन को सुखद सरल बनाने के विषय में उनके विचार अत्यंत प्रभावशाली थे। वे कहते थे कि कल सुंदर है, इसके लिए आज का बलिदान जरूरी है। उनके विचारों पर अमल करके उन्नत राष्ट्र और समाज की सुंदर कल्पना संभव हो सकती है। शिखर पर पहुंचने के लिए शक्ति और संकल्प की जरूरत होती है, फिर चाहे माउंट एवरेस्ट हो या आपका व्यवसाय। सफलता किसी भी क्षेत्र में पाने के लिए तीन बातें अत्यंत जरूरी हैं: स्पष्ट लक्ष्य, बड़ी योजना और सख्त पैमाना। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान होना भी जरूरी है। आत्मसम्मान तभी आता है जब आप आत्मनिर्भर हो। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और इसके लिए उसे निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। कृत्रिम सुख नहीं, ठोस उपलब्धियों की तलाश में हमेशा रहना चाहिए। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखना जानते हैं। हमेशा ऊंचे सपने देखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। केवल सपने मात्र देखने से पूरे नहीं होते। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर भावनाओं वाला देश बनाना है तो समाज के तीन चरित्र इसे कर सकते हैं: माता, पिता और गुरु। डॉक्टर कलाम के ये विचार आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है और जो सपने देखते हैं वो उनके साथ उन्हें पूरा करने में जुट जाता है। सपने पूरे करने में कठिनाइयां तो आती ही हैं, परंतु उनका आना भी जीवन में जरूरी है। सफलता का आनंद कठिनाइयों के बिन उठाए नहीं जा सकता है। कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा जाती हैं और वो आगे की राह पर चलने के लिए प्रेरित होता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए जरूरी है कि एक निष्ठा, दृढ़ संकल्प, सच्ची लगन और मुश्किलों से डटकर मुकाबला करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। साथ ही मस्तिष्क की ऊर्जा भी अत्यंत आवश्यक है। मस्तिष्क इतना शक्तिशाली होता है कि दुनिया भर का ज्ञान इसमें समाया रहता है। जन्म जन्मांतरों का ज्ञान और संस्कार इसी में समाहित रहते हैं, जो कि मन के माध्यम से मस्तिष्क को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। मस्तिष्क में न केवल वर्तमान ज्ञान बल्कि संचित ज्ञान का भी समावेश रहता है। मस्तिष्क की गति दुनिया में सबसे पलक झपकते ही ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। सारे सुपर कंप्यूटर इसके सामने असफल है, क्योंकि यह आखिर बनाए तो मानव मस्तिष्क नहीं है। कहा जाता है कि आइंस्टीन ने मात्र 9% दिमाग की ऊर्जा का उपयोग किया था और सापेक्षता सिद्धांत और विज्ञान के तमाम रहस्यों से पर्दा हटाकर मानव जाति के कल्याण के बहुत सारे कार्य किए थे। कई वैज्ञानिक खोजें की जिनसे दुनिया अभी भी लाभान्वित हो रही है। स्वामी विवेकानंद ने मात्र 8% मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में याददाश्त और धर्म दर्शन वेदांत तथा हिंदू धर्म के शास्त्रों के ज्ञान का परचम फहराया। शिकागो के 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में तथा समस्त यूरोप में ध्वज लहरा दिया था। गजब की शक्ति और स्मरण शक्ति थी स्वामी विवेकानंद की। उनकी तर्क शक्ति, शास्त्रों की विश्लेषणात्मक व्याख्या, उनके द्वारा प्रस्तुत कर्मयोग, राजयोग आदि के विचार उनके मस्तिष्क की ऊर्जा को परिलक्षित करते हैं। स्वामी जी ने प्रारंभ से ही अपने मस्तिष्क की ऊर्जा का विकास किया था। सकारात्मक चिंतन से अपने मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर ध्यान, चिंतन और अध्ययन द्वारा खोजें। अपने मस्तिष्क और एकाग्रता के चमत्कार उन्होंने यूरोप और अमेरिका में कई बार दिखाए, जिनसे अंग्रेज उनके मस्तिष्क की ताकत और स्मरण शक्ति का लोहा मान गए। एक बार लंदन में टेम्स नदी के किनारे उन्होंने अंग्रेज निशानेबाजों की 6 बुलेट सही निशाने पर लगाकर अपने मस्तिष्क की शक्ति और ध्यान की एकाग्रता से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर विवश कर दिया था। ये विवेचन स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने अपने समय समय पर दिए गए भाषणों में व्यक्त किए थे। आवश्यकता है आज उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अनुसरण करने का।
1: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: निवेशम सामरिकम आर्थिक सहकार्यंच सुदृढीकर्तुम भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्चस्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इन्क्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट T20 टीम विश्व कप से बाहर और पुरुष टीम आयरलैंड से T20 सीरीज हारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की सरकार और जनता का धन्यवाद देते हुए यह सम्मान जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के बीच विक्टोरिया में हुई वार्ता में भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉ यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब 1593 करोड़ रूपये की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया।
1: पानी को लेकर मैंने कुछ निर्णय किए हैं। ग्राम पंचायत कुकरू में राशि 4,14,00,000 की लागत से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कसई में तालाब निर्माण का सर्वे उपरांत जो खर्चा लगेगा हम देंगे। ग्राम जामुखेड़ा में रोड निर्माण के लिए 70,00,000, ग्राम लोकल दरी में पुलिया निर्माण 40,00,000, ग्राम कसई भेड़िया कुंड में 85,00,000, ग्राम खामला में बालिका छात्रावास निर्माण 1,20,00,000, मतलब 120,00,000 की ये छात्रावास की मंजूरी दी है।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगेगा और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के, बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर दें। योजना

0: चित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजाति क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और दो एम्बुलेंस तथा एक शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देते हुए खरगोन नगर पालिका ने धार्मिक आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। नगर पालिका शहर के मंदिरों से प्रतिदिन फूल एकत्रित करके फूलों की अगरबत्ती बना रही है। इस खास अभियान की और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
3: शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूल अब कचरा नहीं बन रहे बल्कि उन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही। नगर पालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल फूल एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए विशेष वाहन लगाए गए जो फूलों को संग्रहित कर अगरबत्ती निर्माण केंद्र तक पहुंचाते हैं। तैयार की गई अगरबत्तियों को कुंदा नाम दिया गया है और उन्हें मंदिरों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगर पालिका का यह नवाचार स्वच्छ भारत अभियान की भावना को मजबूत करते हुए कचरे के पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। अनुकूलनीय पहल को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते।
4: शहर में लगभग 50 से 60 मंदिर हैं, जिनमें कम से कम दिन भर में 5 क्विंटल से अधिक फूल संग्रहण होता है। उनको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करके हम टेंचिंग ग्राउंड पे हमारा जो मशीन रखी हुई है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ सेग्रीगेट करके उसकी सफाई करके पाउडर बनाया जाता है, सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है।
3: खरगोन नगर पालिका की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
1: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना, समृद्धि केंद्र और कार्डियक एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियो रोधक दवा की दो बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। झाबुआ जिले में 2,13,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, सागर, नीमच, देवास, जबलपुर, खंडवा और मंदसौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और क्षत्रिय धान को GI टैग मिल गया है। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि इससे उन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों में नई पहचान, कानूनी संरक्षण और बेहतर कीमत मिलेगी। ये चारों उपज मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र महाकौशल के क्षेत्र में उगाई जाती हैं। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। समापन के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। कल हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब रुख करते हैं खेल का। ICC महिला 20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बना लिए। वहीं आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को कल T20 सीरीज में हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की 7 शासकीय ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 30 जून है। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिपलिया मंडी में 1,77,00,000 की लागत से 32 कैश काउंटर दुकानों और ग्राम गुड़बेली छोटी में सड़क का भूमि पूजन किया। डिंडौरी जिले को एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंदौर में 45 दिवसीय शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का कल

वृक्षारोपण किया गया और धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ। कवि हैं केवल प्रसाद द्विवेदी।
2: इसका शीर्षक है मन तू दूर चल। बेटी

আসে হে মাধুরী ধ্বনি দিলে মোহে লেতি হে উহাঁ।

ता है वहां सप्तरंगी क्षितिज पर हम रावती सप्तरंगी क्षितिज पर हम रावती।

दूसरा है हमारा गजल, जिंदगी की राह में आती अनेकों अड़चने।

अभी आप कवि केवल प्रसाद द्विवेदी से हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ सुन रहे थे। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संकी।

से हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ सुन रहे थे। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम का पहला नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था। फिल्म का नाम था सेज पिया की। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: तन्हा तन्हा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। गीत संगीत रवि का है।

अभी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म तन्हा तन्हा में सुना। गीत संगीत रवि का था। फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं फिल्म जीने की राह का ये गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है,

अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म जीने की राह में सुना। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म जिगरी दोस्त में। शब्द आनंद बख्शी के हैं और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: खो जाऊं कहां ढूंढे कहां जाए मेरा पता फिर तू किससे पूछे
1: जी में, तू बता।

अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म जिगरी दोस्त में सुना। शब्द आनंद बख्शी के थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को फिल्म फतेह में। बोल इंदिवर के हैं और तर्ज बनाई है नरेश शर्मा ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक को फिल्म इज्जतदार में। शब्द आनंद बख्शी के हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म इज्जतदार के गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की

0: राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य संपर्क सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों केंद्रीय

0: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्नपत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेनदेन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देवस्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे

0: ने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0112311 और 0112311444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, मां के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, मां को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत।
1: हमें प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच इस स्टूडियो में डॉक्टर रामकुमार वर्मा उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हिंदी साहित्य में अपनी कविताओं और नाटकों में एक विशिष्ट जाति परंपरा को लेकर रामकुमार जी वर्मा ने एक प्रतिमान रखा है। वे हमारे साहित्य के शलाका पुरुष हैं। आज हम आपसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपने नाटकों में विशेष काम किया है और ये उल्लेखनीय है कि आपका नाटक और वह भी रेडियो पर पहला रेडियो नाटक आया। और आज हम अपनी बातचीत की शुरुआत रेडियो नाटकों और नाटकों के विभिन्न विधाओं से करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आज नाटक

प्रद है। मैंने जिस समय नाटक लेखन प्रारंभ किया था उस समय तो नाटक की कोई विशिष्ट विधा नहीं थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पहले पहल साहित्यिक नाटकों का सूत्रपात किया, उसके बाद उनकी वो साहित्यिक विधा प्रताड़ित हुई पारसी थिएट्रिकल कंपनी के नाटकों के द्वारा। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग आया तो हमें ऐसे नाटक देखने के लिए मिले जो कि रंगमंची और साहित्यिक दृष्टि से कभी संतुलित और कभी असंतुलित होते थे। उदाहरण के लिए नारायण प्रसाद बेताब के नाटक, राधेश्याम कथावाचक के नाटक, इनमें भारतीयता के कथावस्तु तो प्रतिष्ठित किए जाते थे लेकिन जहां तक इनके प्रदर्शन की विधा थी वो पारसी थिएटिकल कंपनी के अनुकूल थे। उसके बाद कहना ये चाहिए कि द्विवेदी युग में नाटकों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं हुआ। फिर जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक लेखन आरंभ किया और उनके नाटक अधिकतर पाठ्य होते थे, अधिकतर नाटक के मंच के अनुरूप नहीं होते थे। यद्यपि उनका ये कहना था कि रंगमंच नाटक के लिए होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के लिए हो, ऐसी उनकी मान्यता थी। लेकिन मैं दूसरे तौर से सोचता था, मैं कहता था कि ये तो ठीक है कि कभी कभी हम नाटक ऐसा लिखते हैं जैसे प्रसाद जी ने लिखा है स्कंद गुप्त नाटक है जिसमें कि कुभा का बांध टूटता है, उसमें बहते हुए स्कंद गुप्त चले जाते हैं, सारे सैनिक बह जाते हैं और इस प्रकार के दृश्य भले ही कुतूहल वर्धक हों लेकिन वस्तुतः रंगमंच की स्वाभाविकता के लिए वो ठीक नहीं होते। तो मैंने इस बात का प्रयत्न किया कि जब प्रसाद जी के बाद मैं उनके संपर्क में भी रहा, जब मैंने प्रसाद जी के नाटक के अनुसार मैं प्रसाद जी के सिद्धांतों से सहमत तो होते हुए भी अपनी स्वतंत्र विधा से मैंने नाटक लिखा, तो मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि नाटक अपनी स्वाभाविकता में उतना ही दर्शनीय हो जितना कि स्वाभाविक जीवन में मनुष्य बिना किसी प्रयास के आयास से जो कार्य करता है वो उतने ही कुतूहलवर्धक होते हैं जितने कि रंगमंच पर किए गए नाटक कुतूहलवर्धक हैं। तो मानव के मनोविज्ञान की स्वाभाविकता रंगमंच की स्वाभाविकता के अनुरूप ही होना चाहिए और इस दृष्टि से मैंने ऐसे नाटकों का सृजन करने का प्रयत्न किया जो साहित्य में स्वीकृत हुए कि रंगमंच को किसी अनावश्यक उपधानों या व्यवस्थाओं को में न जाना पड़े लेकिन जिस तरह मानव जीवन अपने कार्यों में अपना कार्य घटित करता है उसी प्रकार रंगमंच पर भी मानव जीवन के उन प्रसंगों का अभिनय रूप प्रस्तुत किया जा सके जिससे कि मानव जीवन का रहस्य, उसका कुतूहल, उसका सत्य स्पष्ट हो सके। और इसी कारण जब इस तरह के मैं नाटक लिखता रहा उस समय आपका ये आकाशवाणी का रंगमंच आया। आकाशवाणी का रंगमंच केवल ध्वन्यात्मक है और जितने कार्यों की सांकेतिकता है वो संवाद के द्वारा या किन्हीं विशिष्ट उपादानों के द्वारा होनी चाहिए क्योंकि उसका माध्यम केवल श्रव्य है, हम केवल सुन सकते थे। तो मैंने जो नाटक लिखा वो आंखों का आकाश पहला नाटक था जो कि आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित किया गया। लेकिन अब ये सोचता हूँ आधुनिक युग में जबकि आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन भी आ गया और हमारे सामने अब भी रंगमंच का नाटक है लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे साथ रंगमंची नाटक के साथ ही साथ ये ध्वनिया नाटक आकाशवाणी के नाटक आ गए और दूरदर्शन के नाटक आ गए हैं। अब आकाशवाणी के नाटकों और दूरदर्शन के नाटकों में भी अंतर है, उसका कारण यही है कि अब दूरदर्शन दृश्यात्मक हो गया जबकि आकाशवाणी दृश्यात्मक नहीं था, वह केवल श्रव्य था। अब दूरदर्शन का नाटक श्रव्य भी है और दृश्य भी है, वह आंखों से देखा भी जा सकता है
और हम समझते हैं कि नाटक के क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी सुविधा ये प्राप्त हुई है जब दूरदर्शन के द्वारा हम शिव के साथ साथ दृश्य भी देख सकते हैं, और उस समय हमें ऐसे नाटकों का सृजन करना चाहिए जिसमें हमारे जीवन की समस्याएं साकार हो सकें, क्योंकि वो जनसंपर्क में सबसे अधिक निकट है जहां तक कि दूरदर्शन का

0: संबंध है वो गांव गांव में पहुंचता है, नागरिकों नागरिकों में पहुंचता है, क्लबों में पहुंचता है, स्कूलों में पहुंचता है, संस्थाओं में पहुंचता है। और हमारी जनता आजकल अधिकतर दूरदर्शन के लिए बहुत ही आकर्षित हो गई, आकर्षण रखने लगी है। तो हमें ऐसे नाटकों का सृजन करना चाहिए जो कि हमारी सामाजिक समस्याओं को समाधान करने में समर्थ हो सकें, साथ ही साथ जो जीवन की स्वाभाविकता से परिपूर्ण हो। अब शशांक जी, आप तो कहानी और उपन्यास लिखते हैं और आप इस बात का अवश्य ध्यान रखते हुए होंगे कि उसमें अब वो वातावरण नहीं है जो देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में था कि अय्यारी हो, तिलस्मी हो, ऐसा कुतूहल जासूसी हो, इस प्रकार के नाटक आज हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसे उपन्यास और ऐसी कहानियां चाहिए जो कि जीवन की स्वाभाविकता से घटित होते हुए उन सत्यों का दिग्दर्शन करा सकें जिनका अनुकरण और जिनका अनुसरण हमारी सामाजिकता कर सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए जो आपने प्रश्न किया कि आज की परिस्थितियों में जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के, तो आकाशवाणी तो केवल शिव नाटकों का प्रसारण कर सकता था और मेरे अनेक नाटक ही आकाशवाणी के लिए लिखे गए और मैंने स्वयं इस बात का ध्यान रखा कि सारे कार्यों की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया उस ध्वनि के माध्यम से हो सके जिससे कि लोग समझ सकें कि हमारे नाटक जहां तक संप्रेषणीयता में है वो दृश्यात्मकता की आवश्यकता समझें। पृथ्वीराज की आंखें, उसमें पृथ्वीराज का बाण मारना या उसका कौशल दिखलाना या चंद से उसकी जो बात करना या मोहम्मद गोरी का सामने आ जाना, ये सारी बातें ऐसी थी जो कि दृश्य काव्य में होती हैं, लेकिन मैंने इस प्रकार की ध्वनियात्मकता उसमें प्रतिष्ठित की जिससे कि उस ध्वनि से ही हम समझें कि आकाश की मोहम्मद गोरी सामने आ गया है या चंद वरदाई उसके सामने प्रोत्साहन की बात कह रहा है या स्वयं पृथ्वीराज चौहान अपने वीरत्व से प्रभावित होकर के ऐसे ऐसे वाक्य कह रहा है जिससे उसका व्यक्तित्व उभर करके आता है। तो अब तो इन बातों की आवश्यकता दूरदर्शन में नहीं रह गई क्योंकि वो श्रव्य हो गया। अब हम सारी बातों का दिग्दर्शन या प्रदर्शन दूरदर्शन के द्वारा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी चर्चा में आपने बतलाया कि हमारे पास संचार के कई माध्यम हैं, आकाशवाणी है, टेलीविजन है, इसके अलावा वीडियो है, तो इनसे लोग मनोरंजन तो करते हैं मगर आज भी नाटक की अपनी अहमियत खत्म नहीं होती। मगर छोटे कस्बों में और बड़ी जगहों पर भी नाटकों के जो एमेच्योर दल हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए शशांक जी, इस बारे में मैं बहुत ही गहराई से सोचता रहा हूँ। उसका कारण यह है कि हमारे लोक साहित्य में कुछ ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपनी संस्कृति का प्रसारण कर सकते हैं और जो हमारी संस्कृति के तरल रूप से ही निर्मित हुई थी। उदाहरण के लिए जैसे हमारे यहाँ के लोकगीत हैं, ढोला मारू है, आधा उदल है या माधवानल काम कंदला है, तो इस प्रकार की जो लोक कथाएं हमारे सामने थी और जिन्होंने किसी विशिष्ट आदर्शों के ऊपर वीरत्व के लिए, प्रेम के लिए, स्वाभाविक आकर्षण के लिए या देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने ऐसे ऐसे चरित्र अपने प्रदर्शित किए हैं उन लोक गाथाओं में, जिनके द्वारा कि हम आज के समाज को अधिक प्रेरित कर सकते हैं, अधिक जागरूक बना सकते हैं, अपने देश के प्रति अधिक आस्थावान बना सकते हैं। फिर जो लोक काव्य है, जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ईसरी है, उसने ऐसे ऐसे मनोभावों की संप्रेषणीयता जनता तक पहुंचाई है जिसके द्वारा हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं, हमारी सामाजिक मर्यादाएं ये स्पष्ट होती हैं। और अब आज ऐसा समय है जबकि हम उन लोक गाथाओं के उन सांस्कृतिक पक्ष को उजागर करें और हम अपनी जनता को बताएं कि हमारी मूलभूत संस्कृति यह है और उसके अनुसार हम वही प्रेम, वात्सल्य, अनुराग, आकर्षण, विकर्षण, इन सारी प्रवृत्तियों को हम जनता के सामने उभार कर रखें कि हमारी जनता उनका अनुसरण करे।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा था कि नाटकों में आज के समकालीन सरोकारों को ही सामने रखना चाहिए, यही बात कविता, उपन्यास और कहानी के लिए कहा जा सकता है, तो क्या आजादी के बाद हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं और हमारा जो लेखक है, इन दोनों के बीच क्या कोई खाई सी आ गई?
0: बिल्कुल शशांक जी, ये प्रश्न बड़ा मुझे कष्टकारक है
1: जी,

0: जब कभी मैं इस प्रश्न पर सोचता हूं तो मुझे हार्दिक कष्ट होता है। जब तक कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी, तब तक हमारा प्रेम देश के प्रति था। माखन लाल चतुर्वेदी ने अपने पुष्प की अभिलाषा लिखी कि मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर के। सुभद्रा कुमारी चौहान की झंडा सत्याग्रह की कविताएं, या वीरों का वसंत क्या हो, या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, या मैं अपनी कविताओं को रख सकता हूं कि हमारा देश भारत भी कभी आजाद होवेगा, हमारे हाथ का हीरा हमारे हाथ होवेगा।
1: क्या बात है,
0: नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे तो पोसे तलवारों से, नहीं डरेंगे पहने पहने हथियारों के वारों से, नहीं डरेंगे लेश मात्र भी भीषण अत्याचारों से, नहीं डरेंगे लेश मात्र भी गोली की बौछारों से, लेंगे हम अवश्य लेंगे अपने हम अपने अधिकारों को, चाहे सहना पड़े हमें फिर गोली की बौछारों के। ऐसी कविताएं उस समय हिंदी में निकलती थी जिनमें बालकृष्ण शर्मा नवीन और सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गया प्रसाद शर्मा त्रिशूल, ऐसी रोमांचकारी कविताएं थी। और दूसरी ओर हिंदी के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, सेठ गोविंद दास, ऐसी ऐसी महान विभूतियां थी जिन्होंने हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा प्रतिष्ठित करने के लिए कितना अनथक परिश्रम किया और जेल गए। अच्छा, अब 1947 के बाद हम स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र होने के बाद एक बहुत बड़ी सफलता हमको ये मिली कि 150 वर्ष की गुलामी से संघर्ष करते हुए, अहिल्याबाई के 1857 में कार्य करते हुए, नाना साहब विठूर के कार्यकलापों को साथ देते हुए, और इतना संघर्ष करने के बाद भी, या एक ओर महात्मा गांधी का सत्याग्रह और दूसरी ओर भगत सिंह का आत्मबलिदान, मातृभूमि की वेदिका पर प्राण जो उत्सर्ग कर दे और जिस अपने त्याग से इस भूमि को ही स्वर्ग कर दे, इस अमर इतिहास का मैं एक लघु अक्षर बनूं, मैं प्रिय तुम्हारा स्वर बनूं मैं, ये मेरी कविता है जो कि मैंने उस समय लिखी थी सरदार भगत सिंह के आत्मबलिदान पर और महात्मा गांधी के त्याग पर। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जैसे सारा वातावरण में एक प्रकार का अंधकार छा गया, यद्यपि हमारी स्वतंत्रता का प्रकाश तो हमें मिला, लेकिन उस प्रकाश के भीतर एक ऐसा काला घना बादल आ गया कि हमें जो कुछ लक्ष्य था वो हमने प्राप्त कर लिया, अब हमारे लिए कोई बात की आवश्यकता नहीं है। हमने विदेशियों को उस देश से निर्वासित कर दिया, दो शब्दों की फूंक से क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, दो शब्दों की फूंक से हमने विदेशियों को इस देश से निकाल दिया और हम इस देश के स्वयं स्वतंत्र निवासी बन गए। लेकिन स्वतंत्र निवासी होने के बाद जो उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर था और है, उस उत्तरदायित्व के निर्वाह करने में हमने शिथिलता प्राप्त की। परिणाम आज ये हुआ कि हम अपनी ओर ना देखकर पश्चिम की ओर देखने लगे, आज ही मुखापेक्षी। मैंने जब मॉस्को में था तो जब मैंने राष्ट्रभाषा और अपने राष्ट्र प्रेम पर व्याख्यान दिया तो वहां के डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि जब आपकी राष्ट्रभाषा इतनी मधुर है और आप इतने स्वतंत्र हो गए हैं तो आप विदेश की परंपराओं को, विदेशी सभ्यता को, विदेशी भाषा को क्यों अपना रहे हैं। और मेरे पास उस समय केवल यही उत्तर था, मैंने लज्जित होकर मैंने कहा साहब हमने वो कांटों का ताज तो अपने सर से हटा दिया है लेकिन कांटे हमें आज भी चुभ रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक बातचीत में आपके ये लगता है कि आज हमारे पास अवसर बहुत हैं, हमारे पास छपने के अवसर हैं, उनको प्रसारित प्रकाशित करने के अवसर बहुत हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज का लेखक अपनी लोकप्रियता और व्यावसायिकता दोनों के बीच में भेद नहीं कर पा रहा है?
0: ये कहिए कि दोनों में बह गया है वो। आप तो बहुत अच्छे कहानी लेखक उपन्यासकार हैं, आप इस बात का अनुभव करते होंगे कि आज इतने गंदे उपन्यास निकल रहे हैं, कला विहीन, जिसमें सेक्स और क्राइम, ऐंद्रिकता और अपराध के आधार पर भी ऐसे उपन्यास और कहानियां लिखी जा रही हैं जिनसे हमें प्रेरणा तो नहीं मिलती लेकिन

0: उन अपराधों को करने की युक्ति हमें मालूम होती है कि अपराध ऐसे किया जाता है या यौन के प्रति पागल हो इस तरह से हुआ जाता है। इस प्रकार के जो वृत्तचित्र हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, इस प्रकार हम मानते हैं कि जीवन की स्वाभाविकता है, लेकिन साहित्य दूरदर्शन का ये कर्तव्य है, यह आकाशवाणी कर्तव्य है कि वो जनता का मार्गदर्शन करे जिससे कि वो सतपथ पर अग्रसर हो सके। साहित्यकार को हम समझते हैं कि वो 2 शताब्दियों के आगे की चीज देखता है, कभी 200 वर्ष पीछे चला जाता है टहलता हुआ और कभी 200 वर्ष आगे चला जाता है टहलता हुआ। तो साहित्यकार का दायित्व वो समाज को मार्गदर्शन करने का है। जितने आज हमारे पास साधन हैं जिनके द्वारा कि हम जनता में अपने विचारों का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, उन साधनों का ये आदेश और इस प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए कि वो समाज को सतपथ की ओर अग्रसर करने में सहायक हो सके, ऐसी प्रेरणाएं दे सके, ऐसा कथ्य दे सके, ऐसी रचना धर्मिता दे सके जिससे कि हमारी जनता जीवन के कल्याण, मानवता के कल्याण की ओर अग्रसर हो। और जब तक कि हम अपना ये दायित्व पूरा नहीं कर सकते कि हम मानवता को सतपथ की ओर अग्रसर करा सकें, चाहे इतिहास के बल पर, चाहे राजनीति के बल पर, चाहे राष्ट्रीयता के बल पर, चाहे सामाजिकता के बल पर, हम इन माध्यमों से जब तक ऐसी प्रेरणाएं अपनी जनता को नहीं दे सकेंगे कि वो मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करे, तब तक हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।
1: डॉक्टर साहब, यह हमारा सौभाग्य है कि आपसे हम ये बात जान सकते हैं कि आप महादेवी वर्मा, निराला जी, इन सबके साथ रहे हैं और ये आकस्मिक नहीं कि आज भी ये हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं और इनसे हम साहित्य के सरोकारों से और नजदीक आते हैं। इनके साथ रहकर आपने क्या महसूस किया?
0: शशांक जी, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन में अनेक प्रसंग आए हैं और मैं, आप तो जानते ही हैं कि मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ, यहाँ का रहें मध्य प्रदेश का व्यक्ति हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। मैंने अपना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर से मैंने पास किया और चूंकि उस समय नागपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1925 में और 1925 में मैंने इंटरमीडिएट परीक्षा दी थी, 1925 का जो सिलेबस निकला था उसमें बीए में कोई वैकल्पिक विषय नहीं था हिंदी, तो उस चूंकि मैं हिंदी के प्रति अधिक आस्थावान था और वो विषय बीए में नहीं था, मैंने देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, तो मैंने पिताजी से आज्ञा लेकर के मैं जबलपुर से इलाहाबाद चला गया और वहाँ मैंने बीए और एमए आज परीक्षाएं पास की। इस बीच में मैं बराबर मध्य प्रदेश आता रहा और माखनलाल जी चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव पाठक और रामानुजलाल श्रीवास्तव, भवानी तिवारी, भवानी मिश्र और द्वारका प्रसाद मिश्र जिन्होंने की कृष्णायन के रचना, इनके संपर्क में बराबर आता रहा और जब कभी यहाँ गोष्ठियाँ होती रहीं तब तक मैं उस पर सम्मिलित होता रहा। मैं ये बात बता दूं आपके प्रश्न के उत्तर में कि इन लोगों ने, जो मेरे अग्रज थे, उन्होंने न केवल मुझे साहित्य लिखने के लिए प्रेरित किया लेकिन साहित्य की विधाओं से परिचित कराया। काव्य इससे लिखा जाता है, कहानी इससे लिखी जाती है, नाटक इस प्रकार लिखा जाता है, आलोचना का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए, इन व्यक्तियों ने प्रेरणा दी। और विशेषकर दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रेरित किया मुझे, एक थे चिरगांव के महाकवि मैथिली शरण गुप्त और दूसरे भावे के माखनलाल चतुर्वेदी। इन दो में ये मेरे प्रेरणा गुरु हैं जिन्होंने कि मुझे साहित्य में प्रेरित किया और मैं साहित्य के सामग्रियां उपस्थित करने लगा और फिर उन्होंने मुझे पुरस्कृत भी किया अनेक रूपों में, ये बात तो अलग है, लेकिन जो प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई साहित्य लेखन की और नाटक लेखन की वो इन दो महानुभाव, कवि के क्षेत्र से मैथिली शरण गुप्त जी और नाटक के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक नाटक लिखा कृष्णार्जुन युद्ध, जो कि सप्तम हिंदी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर जबलपुर में खेला गया, उस नाटक में मैंने भी भाग लिया था, एक छोटे राजकुमार का, और उसमें मैं

0: अभिनय, वहां से मैंने अभिनय शुरू किया जबकि मैं 9 वर्ष का था। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि नाटक वो नहीं लिख सकता जो कि रंगमंच का अभिनेता ना हो। जिसको रंगमंच का ज्ञान नहीं है वो लेखक नाटककार नहीं हो सकता। नाटककार वही व्यक्ति हो सकता है जो अभिनेता रहा हो। तो उस समय उन व्यक्तियों ने मुझे प्रेरित किया। फिर उत्तर प्रदेश में जब मैं प्रयाग में पढ़ने के लिए गया तो उस समय निराला जी थे, सुमित्रानंद पंत थे, महादेवी वर्मा थे, भगवती चरण वर्मा थे, इलाचंद्र जोशी थे। ये 5 मेरे मित्र थे। तो इनमें निराला जी पंत जी तो मेरे अग्रज थे और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। लेकिन महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा मेरे समकक्ष थे, समकालीन थे। और हम लोगों ने उस समय जो रचनाएं प्रकृति के सौंदर्य और छायावाद के संबंध में, रहस्यवाद के संबंध में लिखी, वो वस्तुतः छायावाद का मेरुदंड साबित हुई। तो इस प्रकार इन व्यक्तियों की प्रेरणा मुझे सदैव, अब जो मैं देखता हूं वो ये है कि जो साहित्यकार है वो साधना विहीन है, वो साहित्य नहीं पढ़ता। अन्य भाषाओं का, हम लोगों को कहा जाता था बंगला पढ़ो, रविन्द्रनाथ ठाकुर की साहित्य की रचनाएं पढ़ो, के मुंशी गुजराती रचनाएं पढ़ो, मराठी खंडेकर की रचनाएं पढ़ो, और दक्षिण की कंब की रामायण पढ़ो, रंगनाथ की रामायण पढ़ो तेलुगु में। इस प्रकार की प्रेरणा ये लोग देते थे और हम लोग पढ़ते थे और हमारा, हम लोगों का साहित्यिक दृष्टिकोण विस्तृत होता था। आज का साहित्यकार पढ़ने में या साधना करने में अपने को अक्षम पाता है, शायद इतनी प्रवृत्तियों से वो आबद्ध रहता है कि उसे उन अवकाश ही नहीं है। एक अपनी भाषा के अतिरिक्त ना वो गुजराती जानता, ना मराठी जानता, ना बंगाली जानता। उत्तर भारत की भाषाएं हैं उन्हीं को जाने। अब हम लोगों ने कितना अभ्यास किया था बंगाली पढ़ने में, गुजराती पढ़ने में। मैं तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी मराठी में हुई।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद मैंने गुजराती पढ़ी और रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि पढ़ने के लिए मैंने बंगला पढ़ी। तो इस प्रकार फिर रूस गया तो वहां बंगला और रूसी भाषा पढ़ी, फिर लंका गया तो वहां सिलोनी सिंधली भाषा पढ़ी, तो मैं नेपाल गया तो नेपाली भाषा। इतनी भाषाओं का मुझे पूरा अधिकार तो नहीं है लेकिन सामान्य कार्यकलाप की स्थिति मेरे मन में है। आज के साहित्यकार को चाहिए कि वो अन्य भाषाओं का साहित्य पढ़कर अपना मानसिक क्षितिज अधिक विस्तृत करे और अन्य भाषाओं में क्या लिखा जाता है उसकी प्रतियोगिता में अपने हिंदी साहित्य का परिवर्धन करे और नई नई भावनाओं को विस्तार करे, जिससे कि हमारे देश का कल्याण हो, हमारा समाज। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी कहते हैं कि यूनिटी इन इंटीग्रिटी शुड बी द वॉचवर्ड ऑफ दिस कंट्री, इस देश का की संबद्धता और एकता हमारे लिए परम आवश्यक है और ये साहित्य के माध्यम से हो सकती है। मैं घोषणा करके कहता हूं कि अगर कोई माध्यम हो सकता है जिससे कि देश एक हो सकता है, उसमें संबद्धता आती है, तो वो केवल भाषा और साहित्य की एकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। आपकी बातों से ये भी मालूम हुआ कि लेखकों में परस्पर हार्दिकता तो होनी ही चाहिए, साथ में जीवन के सकारात्मक मूल्यों की तरफ भी उनका आग्रह होना चाहिए।
0: आग्रह नहीं, उस पर उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए
1: जी। और इसी से ही हम अपने विश्व रंगमंच पर अपने साहित्य को रख सकेंगे। आज आपने स्टूडियो में आकर समय दिया, हमें बहुत सारी आत्मीय बातचीत में कुछ नई चीजें मालूम पड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ, धन्यवाद।
2: अभी आप कार्यक्रम संग्रहालय से अंतर्गत डॉक्टर राम कुमार वर्मा से बातचीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक रंग कार्यक्रम। इसमें आज कलाकार हैं उमा शंकर नामदेव, ढोलक पर है मुकेश रजक, बैंजो पर है जब्बार खान और झींका पर है बाबू रेखवार। तो आइए सुनते हैं उमा शंकर नामदेव से ये लोकगीत।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हील्स, मदर की माता।
2: आइए सुनते हैं वर्षा पे लोकगीत। कलाकार है उमा शंकर नामदेव।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: आइए सुनते हैं उमा शंकर नामदेव से श्रृंगार पर लोकगीत।

लोकरंग कार्यक्रम आप आकाशवाणी छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मल्हार। कलाकार हैं उमा शंकर नामदेव।

इसी लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे उमा शंकर नामदेव, ढोलक पर थे मुकेश रजक, बैंजो पर जब्बार खान और झीका पर थे बाबू रैकवार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए एक ही संगीतकार कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए संगीतकार आनंद मिलिंद के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी नगमे। श्रोताओं, संगीतकार आनंद मिलिंद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध संगीतकार भाइयों आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव की जोड़ी है। दिग्गज संगीतकार चित्रगुप्त के पुत्रों ने 200 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। सन 1988 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत है आनंद मिलिंद का।

श्रोताओं, अभी आपने अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म कयामत से कयामत तक में सुना। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था आनंद मिलन का। श्रोताओं, आनंद मिलन को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसके संगीतकार हैं आनंद मिलन, आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की, बोल समीर के हैं और फिल्म का नाम है दिल।

अभी आपने अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण को फिल्म दिल में सुना। बोल समीर के थे और धुन तैयार की थी आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, एक ही संगीतकार कार्यक्रम में आज आप संगीतकार आनंद मिलिंद के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी नगमे सुन रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनका संगीतबद्ध किया अगला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म बेटा से। आवाजें हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की, शब्द समीर के हैं।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को फिल्म बेटा में सुना। शब्द समीर के थे और संगीत निर्देशन था आनंद मिलन का। आइए अब सुनते हैं फिल्म सौगंध का ये गीत अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में। बोल समीर के हैं और संगीत है आनंद मिलन का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में फिल्म संगीत का ये गीत। बोल संतोष आनंद का है और संगीत है आनंद मिलिंद का।

फिल्म संगीत के इसी गाने के साथ ही एक ही संगीतकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसमें आज आपने संगीतकार आनंद मिलिंद के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुने। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी।

0: आलेख नीरज कुमार शुक्ल का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात प्रशासन और सहकारिता की। जिले में बीते दिनों राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान और हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय पर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर बिजली समाधान शिविर लगाए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर भी जिले में लगातार गतिविधियां चल रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर साकेत मालवीय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तुलसी सरोवर तालाब में श्रमदान कर साफ सफाई की। वहीं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से बावड़ी उत्सव का आयोजन किया। अब बात करते हैं जिले की ऐतिहासिक धरोहरों की। अशोकनगर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए जिला पुरातत्व और पर्यटन तथा संस्कृति परिषद की ओर से पर्यटन मित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन मित्रों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। विश्वख्यात चंदेरी साड़ी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक चंदेरी साड़ी पर GI टैग लगाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चंदेरी साड़ियों के संरक्षण और बेहतर विपणन के लिए हैंडलूम पार्क के नाम से एक समर्पित वेबसाइट तैयार की जाएगी और MPIDC को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जिले में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि उपसंचालक अमित भदौरिया ने बताया कि इस वर्ष 3,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक 1,78,000 हेक्टेयर में मक्का, 65,000 हेक्टेयर में सोयाबीन और 9,000 हेक्टेयर में मूंग तथा 2,500 हेक्टेयर में उड़द की बुआई की जाएगी।

समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भी जिले में विशेष अभियान चलाया गया। बीते दिनों नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी उत्साह के साथ मनाया गया। अशोकनगर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो इस योजना के तहत जिले के हजारों हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के हितग्राहियों के खातों में कुल 1,49,22,000 रूपये की पेंशन राशि अंतरित की। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। श्रद्धेय जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित किए जाने के मामले में जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा था। समाज की सूचना पर थाना कोतवाली अशोकनगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। ये कोच एथलेटिक्स में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ साथ आर्मी और एमपी पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवक युवतियों को निशुल्क प्रशिक्षण देंगे। सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों की जमीन के सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का समय पर निराकरण करने, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान देने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। अशोकनगर जिले से होकर गुजरने वाली बीना गुना रुठियाई पैसेंजर ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बीते दिनों क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बीना के लिए रवाना किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों का उपचार कराया जाएगा। इन बच्चों को सर्जरी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध नारायणा हॉस्पिटल के हेल्थ एसआरसीसी भेजा गया है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इन बच्चों का इलाज किया जाएगा। और अंत में बात जागरूकता अभियान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय सबके लिए अभियान के तहत ग्राम सीहोर में बीते दिनों आदिवासी समुदाय के बीच विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वन अधिकार अधिनियम 2006, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं सबरंग कार्यक्रम, इसमें सुनिए मिश्रित संगीत। तो सबसे पहले सुनते हैं भजन, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने और गीत लिखा है अनजान ने।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: आइए सुनते हैं गजल, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने। शायर हैं कृष्ण अदीब और संगीत जगजीत सिंह का है।

आइए सुनते हैं फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म उमराव जान से। आवाज है आशा भोसले की, गीत शहरयार का है और संगीत है खय्याम का।

अभी आपने आशा भोसले को फिल्म उमराव जान में सुना। गीत शहरयार का था और संगीत था खय्याम का। इसी गीत के साथ ही मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विनीता उमर का प्यार भरा नमस्कार। पहले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है ग्राम खकल विकास खंड नदी गांव जिला जालौन यूपी से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर एवं समस्त परिवार का। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। ये ईमेल हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू का। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक, चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डग्गू भाविक सिक्का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। कवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन MP से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली का। मेहर नगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से प्रणिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, टुक टुक। आकार हाईटेक्स बहादुरा नागपुर से वैशाली श्लेष गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये ईमेल हमें मिला है ग्राम खकल विकास खंड नदी गांव जिला जालौन से दीपक सिंह गुर्जर, घनानंद बिहार, मिखाइल गर्वाचौव, खड़ी बोली हिंदी। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम MP से हैं जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ का। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सुरेश, आरती, रेखा, सरोज, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। ये ईमेल हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा MP से सजिता, संजय और बेबी किट्टू का।

मुरादाबाद दूल्हापुर यूपी से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। ये ईमेल हमें मिला है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म साथी का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत दिया है नौशाद ने।

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है ग्राम लोहाड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव इंद्रपाल यादव राघवेंद्र अरविंद रागनी रिया देवांशी रेनू रोनिका यादव एवं समस यादव परिवार अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर एमपी से चंद्रेश गौहर वंदना गौहर मयंक गौहर और तन्वी गौहर का यह ईमेल हमें मिला है धाम मोहल्ला पन्ना एमपी से कौशल किशोर मट्टू संगीता मट्टू हर्षित एवं वैभव मट्टू का जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहनी बगाज माता रेडियो श्रोता संघ कुंडेश्वर के पास ग्राम हरपुरा मीडिया पोस्ट खीरिया नाका जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इंद्रपाल सिंह राजपूत देवी सिंह नारायण दास चंद्रपाल सिंह उम्मेद कंवर उर्मिला नेहा प्रेम कंवर अंकिता देवी अविता देवी आरुषि देवी ऑरेंस सिंह और अभिराज राजपूत का ग्राम अजनर जिला महोबा यूपी से सुरेश कुमार सैनी प्रीति राज दिनेश कुमार सैनी और समस्त सैनी परिवार का ग्राम पोस्ट पिपरा माफ जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से चोखे लाल प्रजापति गोलू उर्फ खूब चंद्र प्रजापति वीरेंद्र दानवीर प्रजापति और प्रियंका प्रजापति का बिरखेरा

जिला हमीरपुर यूपी से मणिपाल मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, प्रांची पाल, निवेदिता पाल, ज्योति पाल, मानसी पाल, सुदीपा पाल और सुशीला पाल का। ग्राम तालगांव, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नागल, संतोष नागल, प्रताप नागल, अभिषेक नागल, शिवम नागल। ग्राम बिडोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सुयांश गुर्जर, छाया गुर्जर, मानवी गुर्जर, नंदिनी गुर्जर, नैना गुर्जर और स्वाति गुर्जर का। त्रिलोक सिंह भगत, राघवेंद्र सिंह गुर्जर, वकील गुर्जर, देवेंद्र गुर्जर, मानवेंद्र गुर्जर और राज गुर्जर का। ग्राम तीतरा, खलीलपुर, जिला जालौन, यूपी से अंजलि जाटव, ऋषि जाटव और राघवेंद्र जाटव का। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म मेरे सनम का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है चंद्रनगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग का। रोहित यादव, बेटा यादव, पंकज यादव, अंगद, आयुष, आर्यन यादव, आदर्श यादव और हार्दिक यादव, ये हैं परसेठा जिला फतेहपुर यूपी से। रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार, ये हैं जय जितेंद्र, श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से। ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजाराम अहिरवार, राधेलाल, प्रवीण, श्रीमती शारदा, कुमारी दीपा, सीमा, निशु, राखी अहिरवार। ग्राम पोस्ट पापेट तहसील शाहगढ़ जिला सागर से अशोक, कमल, नामदेव, मदन, अनुरत, तुलसी, राकेश, प्रकाश, राजाराम देव। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम राम हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सुरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडेराम राजवड़े, अजय पाल, रेडियो श्रोता संघ अजयगढ़ जिला पन्ना एमपी से भगवत सिंह यादव, शिखा यादव, अनुराधा यादव और इनके परिवार वाले। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, आकृति राहुल, ज्योति राहुल, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, छोटी गुड़िया नूर और नमन। रेडियो श्रोता परिवार शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, राधिका सैनी, दीपिका सैनी। कानपुर उत्तर प्रदेश से पूनम सिंह, काजल सिंह और उनके परिवार के सभी सदस्य। शिशु मंदिर विद्यालय के पास ग्राम पोस्ट सोरई थाना मडावर जिला ललितपुर यूपी से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजय, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, शक्ति, भक्ति, अनु, अन्यान्या,

एवं समस्त नामदेव परिवार, आजाद रेडियो लिसनर्स क्लब वलीदपुर मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप, स्नेह रेडियो श्रोता संघ ग्राम मिर्थला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, रश्मि, दीपिका, सुषमा, देवांश भास्कर और नंद किशोर व्रज नंदन। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म एक नजर का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, संगीत है

अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म एक नजर में सुना। शब्द मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गाने के साथ ही श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त करने की अपने रेडियो मित्र विनीता ओमर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। समय हुआ है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का। सुनिए भोपाल केंद्र से अगला कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी भोपाल है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
1: सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। उम्मीद, जी हाँ मित्रों, हमारी जिंदगी की समूची बुनियाद इसी एक शब्द पर टिकी हुई है, उम्मीद। जैसे रिश्तों की डोर हो, संबंधों की गहराई हो, प्रकृति का संतुलन हो, सब कुछ किसी न किसी रूप में इसी पर निर्भर है। और ऐसा ही एक शब्द है इंतजार। उम्मीद और इंतजार का दामन थामे हम एक बार फिर मनोहार लगा रहे हैं बादलों से कि वो भी बरसें। क्यों हमें इतना तरसा रहे हैं? हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में अभी बारिश ने दस्तक नहीं दी है। इस इंतजार को और कितने दिन, इस इंतजार की घड़ियां और कितनी लंबी होगी? हम उम्मीद का दामन थाम कर ये तो सोच ही सकते हैं कि ये इंतजार जल्द से जल्द खत्म होगा और हम बहुत जल्द उस बारिश में भीगते नजर आएंगे जिसका हम सभी को बड़ी उम्मीदों के साथ बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के पहले श्रोता के कॉल का।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी।
2: ये सर, मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
1: अशोक जी,
2: जी
1: जबलपुर से बोल रहे हैं
2: सर आप?
1: हम तो बहुत बढ़िया हैं और आपसे बातें करते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
2: मन भी अच्छा हो गया सर, आपसे बात हो रही, पहली बार आपसे बात हो रही, अच्छा लग रहा।
1: जी हाँ जी हाँ, बताइए अशोक जी, आपके शहर का मौसम कैसा है अभी?
2: मौसम तो धूप ही है सर, बौरा अड़ती चल रहा है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं आते, बादल बस।
1: अच्छा, सिर्फ बादल आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है?
2: ऐसी कहीं कहीं बस जाता है छोटा मोटा।
1: अपने देश का लगभग अधिकांश हिस्सों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है।
2: जी सर, आए जमाजम बारिश है, उसका इंतजार है।
1: हम सभी को उस खूबसूरत बारिश का इंतजार है जिसके जरिए हम अपनी इस गर्मी से निजात पाएंगे। जी,

0: बताइए कौन सा गीत आज आपके लिए हम निकालें।
1: अब आ जाए तो पर्वत से काली घटा टकराई, चांदनी मूवी का है।
0: अच्छा जी,
1: आशा भोसले जी की आवाज़।

जाई।

0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: जी जी जी जी, मैं रमेश नायक ग्राम खेरोकला जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: रमेश नायक जी?
1: जी जी हाँ।
0: कैसे हैं नायक साहब?
1: मैं बढ़िया हूँ जी सर, आप कौन बोल रहे हैं?
0: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम।
1: शिवम, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी
0: जी।
1: अच्छा, और सुनाए, और क्या है समाचार?
0: हम तो बढ़िया हैं, आप बताएं आपके यहाँ क्या है, इन दिनों हालात कैसे हैं, मौसम?
1: बात तो गर्मियों के ही चल रहे सब जो है।
0: अच्छा,
1: अभी
0: अच्छा,
1: तो यहाँ बारिश नहीं हुई है जो है, बहुत गर्मी पड़ रही।
0: तो अभी वहाँ पर बारिश की

0: दस्तक नहीं हुई है।
1: नहीं, अब यहाँ एमपी में तो रहेगा, वहाँ हो चुकी है इंदौर भोपाल तरफ कहीं।
0: नहीं, बारिश तो हमारे यहाँ पे भी आई है, मौसम में ठंडक आ चुकी है, उतनी गर्मी तो नहीं है, लेकिन
1: यहाँ यूपी में नहीं बारिश हुई अभी, उत्तर प्रदेश में।
0: अच्छा जी। चलिए, हम
1: तमाम भाई क्या है समाचार दोस्त यार?
0: बहुत बढ़िया है। हम चाहते हैं कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ पे भी उम्मीदों की बरसात हो।
1: बहुत शुक्रिया दोस्त यार।
0: जी जी जी।
1: और फार्मेसी प्रोग्राम चल रहा ना?
0: हाँ जी, आज हम आपके फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के लिए।
1: वेरी गुड वेरी गुड। आप एक गाना सुना देना दोस्त यार शिवम भाई।
0: हाँ जी बताइए।
1: एक यार ये अनमोल मोदी फिल्म है जो है ये।
0: जी
1: हाँ, उसमें ऐसा भोसले ने गीत गाया कि मोतियों की सेज बिछाई हुई है।
0: ये मोतियों की सेज बिछाई हुई
1: है।
0: अच्छा जी।
1: दिल की दुनिया सजाई हुई है। आजा आजा लेके बारात आजा। अभी शादियों का दौर चल रहा है, 11-12 जुलाई तक शादियाँ हैं अभी।
0: हाँ हाँ हाँ। इस फरमाइशी गीत को हम जरूर पेश करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल दोस्त यार, बड़ा अच्छा लगा से हम भाई यार तुमसे बात करते।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते
0: जी,
1: सिवनी से बात कर रहा हूँ, राहुल ध्रुवे।
0: कौन सी वाली सिवनी?
1: जिला सिवनी है मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, ये छिंदवाड़ा के नजदीक जो पड़ता है वो?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: 20 किलोमीटर दूर है मेरा गांव यहाँ से, जहाँ पे।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं वीडियोकॉन DTH पर जॉब करता हूँ।
0: अच्छा जी जी, और घर परिवार में कौन कौन है?
1: सभी है, मम्मी पापा।
0: तो रेडियो का शौक आपको कहाँ से लगा, ये बता सकते हैं?
1: मैं अभी तक भोपाल को 1 साल से सुन रहा हूँ सर, मैं तो ज्यादा, मैं बालाघाट से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भोपाल में मुझे सबसे ज्यादा जो प्रिय है मेरा जो
0: जी
1: करेगी इसके लिए, ये मुझे लगता है सबसे फेवरेट है, और आप पूरे 7 दिन चलाते हैं ये बहुत बड़ी बात है सर। ये मेरे को सबसे, जिससे आकाशवाणी में लगभग मैं सुनता हूँ
0: जी,
1: तो ये जो भोपाल है इसमें 7 दिन से चलाते हैं ये बहुत जबरदस्त लगता है मुझे। जो फॉलोअर्स हमारे जुड़ते हैं अलग अलग गांव से शहर से, ये बहुत अच्छा लगता है
0: जी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अलग अलग शहरों के, अलग अलग हिस्सों के, देश के हिस्सों से जब फोन आते हैं तो हमारे नए नए श्रोता या पुराने श्रोता तरह तरह की बातें करते हैं। गीत तो आप किसी भी कार्यक्रम में सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमारे श्रोताओं की जो बातें हैं वो इस कार्यक्रम में चार चांद लगाती है।
1: ये जबरदस्त।
0: बताइए कोई गीत जो आज आप सुनना चाहते हो वो हम आपको जरूर सुनवाएं।
1: दीवाना, दीवाना मूवी का रहेगा सर।
0: अच्छा जी, दीवाना फिल्म का कौन सा गीत?
1: तेरी अदा से।
0: बहुत बढ़िया गीत आपने सुनना चाहा है, और इस गीत को
1: सर आप किससे बात हो रही है
0: आज? आज आप बात कर रहे हैं शिवम से।
1: शिवम, हाँ। धन्यवाद।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: जी। नमस्कार
0: जी, किनसे हमारी बात हो रही है ये सबसे पहले जान लें।
1: जी शिवम जी, मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: जी विपिन भाई, कैसे हैं?
1: अच्छा बढ़िया ठीक हूँ। और आज लगभग 2-2.5 महीने की बाद आधाई भोपाल की, तो हमने कहा चलो आज कॉल करते हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने
1: से बात होती है,
0: हमारे अनुरोध को स्वीकार किया कि हमारे वो श्रोता जो फोन कॉल लगाना चाहते हैं लेकिन किसी ही वजहों से उनका फोन नहीं लग पाता है, उनके लिए आपने थोड़ा सा इंतजार किया।
1: हाँ जी बिल्कुल, और मई में तो कॉल नहीं किया मैंने, अप्रैल में बात हुई थी मेरी।
0: जी जी जी
1: जी, तो जून भी खत्म होने वाला, बताइए क्या हाल चाल है आपके?
0: हम बढ़िया हैं, हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोता बहुत अच्छे से होंगे ये हम उम्मीद करते हैं।
1: जी बिल्कुल ठीक ठाक ही हैं और बढ़िया रहेंगे भी।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: और आपसे बात हो जाएगी, हमने सोचा ही नहीं था लेकिन आप आ गए तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: कहते हैं ना कि जो मन में दबी हुई इच्छाएं रहती हैं
1: जी,
0: वो कभी कभी अगर बहुत शिद्दत से चाहो ना तो वो उम्मीद वो इच्छा पूरी होती
1: जी बिल्कुल। और आपने जैसे ही हेलो बोला तो हम समझ गए कि आज तो शिवम जी आए हैं।
0: जी जी, बताइए क्या हाल है इन दिनों आपके शहर?
1: हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक ही है, और अभी तो बहुत धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है हमारे।

0: यहाँ पे क्योंकि बारिश तो पहले हो चुकी है एक दो बार, तीन चार दिन पहले
1: जी,
0: लेकिन अभी जैसी बारिश तो नहीं हुई है तो धूप बहुत ज्यादा है, और फिर ग्रामीण क्षेत्र है तो उस हिसाब से खेती किसानी की तैयारियां चल रही हैं अभी तो खरीफ की, और यही बुआई की लोग तैयारियां में हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं।
1: वैसे देखा गया है कि मध्य प्रदेश में

0: खूबसूरत उसकी धुन है, और उससे भी बढ़कर फिर क्या कहें, आवाजें जिसमें रफी साहब और लता मंगेशकर की, वो गीत सोने पे सुहागा होना ही होना है।
1: बिल्कुल, और इस गाने के अंतरे भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहले उस अंतरे को बोल के बताते हैं वो लोग सिंगर जो गा रहे हैं रफी जी और लता जी, फिर पहले बोल के बताएंगे फिर उसी को गा के बताते हैं।
0: बताइए, चलिए तो कुछ आप भी गुनगुना सकते हैं क्या?
1: मुझे तो मुखड़ा ही याद है, अंतरा तो मुझे याद नहीं आ रहा है।
0: मुखड़ा ही
1: जी, मुखड़ा की गाने की मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हें तो प्यारे हो सजना, तुम्हें तो प्यारी हो, मुझे तुमसे, हाँ मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, तुम्हें तो प्यारी हो सजना।

0: नमस्कार
1: सर
0: जी,
1: मैं ग्राम बापू तीतरा खलीलपुर तहसील कौर जिला जालौन से अंजलि जाटा बोल रही हूँ। जी सर
0: जी, कैसे हैं जी?
1: अच्छे हैं सर।
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: फिर बॉर्डर हिंदुस्तान का सुनवा देना, याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: बॉर्डर हिंदुस्तान,
1: हाँ इसी में याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: याद आती है कलेजा चीर जाती है।
1: शिवम सर बोल रहे हैं ना?
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
1: पहचान लीजिए। आपको सुनते रहते हैं, आपकी प्रस्तुति अच्छी लगती है सर।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हम आप जैसे श्रोताओं के लिए ही हम अपनी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत को अगर आप सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी सर, रोज कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। बस तरह तो लखनऊ भी सुन लेते हैं।

0: तो रेडियो से ऐसी कौन सी चीज आपने सीखी है, जान सकते हैं?
1: रेडियो से तो सर बहुत कुछ सीखा है हमने, 2000 कुछ दे बहुत कुछ सीखा है, बात करना और सभी गायक कलाकारों को पहचानना, आप लोगों की आवाज पहचानना, बहुत कुछ सीखा है।
0: चलिए, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि रेडियो से बोलने की कला आ जाती है।
1: जी,
0: रेडियो जो है वो सुनने का माध्यम है लेकिन उससे बोलने की कला आ जाती है, ये देखिए कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई है।
1: जी
0: चलिए, तो ये गीत हम आपकी नजर करते हैं, आपने फोन किया इसके लिए देते हैं आपको धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो, हाँ जी नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल फोन करे जी सुने
0: जी।
1: जी हाँ सर, कैसे हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं। और आपका परिचय एक बार फिर से जान लें।
1: जी सर, मैं ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता गोलू कुमार अहिरवार।
0: गोलू भाई कैसे हैं?
1: बस सर मैं तो बढ़िया हूँ। और आप बताइए शिवम सर जी कैसे हैं आप?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: बस सर जी अभी तो मतलब बोनी की बुआई चल रही है, मतलब बोनी स्टार्ट हो गई सर जी हमारे होना।
0: अच्छा, तो आपने क्या किस फसल की बोनी कर रहे हैं इस बार?
1: सर हमारे यहाँ तो सागर जिले में सर जी मक्का की बुआई ज्यादा होती, मक्का और उड़दा की।
0: अच्छा, तो मतलब ये बारिश के दौरान आप मक्के की खेती करते हैं?
1: हाँ हाँ, क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले बारिश हमारे यहाँ हो चुकी है तो थोड़ा सा बतर आ चुका था सर जी खेत में, तो बोनी मतलब स्टार्ट होने लगी हमारे यहाँ पे।
0: इतना समय निकाल लेते हैं बोनी के बीच में कि रेडियो के लिए वक्त निकल जाए?
1: हाँ सर, समय तो निकाल लेते क्योंकि रेडियो से सर जी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातें बताते हैं विशेषज्ञ लोग, तो उनके लिए सुनना पाता है सर जी जरूरी।
0: चलिए, तो वो उन जो बातों पे आप अमल भी करते होंगे उनसे कुछ आपको सुविधाएं भी मिल जाती होगी, लाभ भी मिलता होगा।
1: जी सर, सुनते हैं और बाकी उनकी बात को अनसुनी नहीं करते, अमल में लाते हैं सर जी। जो बातें जितनी बताते हैं वो सुन के हम लोग ट्राई करते हैं उन बातों के लिए, और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसे ही करते हैं हम लोग।
0: बताइए गोलू भैया, कौन सा गीत आपके लिए निकाले?
1: सर वो एक गाना ही है, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा। किस फिल्म का गाना है
0: ये? मनोहर है, गुरु फिल्म की।
1: अच्छा, गुरु फिल्म का है।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार सर।
1: जी बताइए।
0: खुदा ने खुश होकर के पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र। अंदर से फिर आवाज आई कि किसके लिए, तो मैंने कहा कि इस वक्त जिनसे मेरी बात हो रही है उनके लिए।

0: बहुत बहुत बहुत बढ़िया, आपका ये तारुफ का जो अंदाज है हमें बहुत पसंद आया। अब हम ये भी जान लें कि किनसे हमारी बात हो रही है।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ, पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी।
0: मोहम्मद रफी मंसूरी
1: जी, कैसे हैं सर आप?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं जी।
1: बहुत बढ़िया हाल चाल सर, और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया, थोड़ी बरसात शाम के टाइम होने लग गई शुरू यहाँ पर।
0: अच्छा जी, बताइए कौन सा गीत हम आपके लिए निकाले?
1: फिल्म का नाम है दो खिलाड़ी, और गाने गायक कलाकार है मोहम्मद रफी, और गाने को बोले झूमता सावन देखो आया बरखाने प्यार बरसाया।

0: हाँ नमस्ते सर जी, मैं ग्राम अजान बोल रहा गेंदालाल परिहार। हाँ सीहोर के पास गांव है वही धावन।
1: कितनी दूर पड़ता है सीहोर से?
0: जी वो अपने नियर बाय रातीपुर से भद्दा रोड गया नहीं उसी पड़ता है जी।
1: अच्छा
0: सर जी, वो तो अपनी पसंद के पर रहता है, जो जो नए भी सुनते हैं पुराने सुनते हैं सभी।
1: कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है वो नया भी नहीं होता पुराना भी नहीं होता, वो सदा बाहर होता है
0: जी। वो तो परिवर्तन क्या परिवर्तन होता रहता, अच्छा लगता है परिवर्तन भी।
1: एक रास्ता से उब जाता है इंसान तो परिवर्तन एक नई ताजगी के साथ में हमारे सामने आता है।
0: जी हाँ सर
1: जी, बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
0: पुराने फिल्म है आंखें, तो गाना मिलती है जिंदगी में कभी कभी।

0: आती कभी कभी।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति शिवम कश्यप की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। अब सुनिए इस खंड की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन और दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में

0: 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम घर घर पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजाति चित्र प्रदर्शनी के तहत गोंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह प्रदर्शनी 30 जून तक संचालित की जाएगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अपना 356वां विकेट लेकर दिग्गज झूलन गोस्वामी के 355 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं की फरमाइश पत्रों के द्वारा जो हमें मिलती है उन्हें हम सुनवाते हैं, उनकी पसंद के गीत हम सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं पुकार फिल्म के इस गीत से, जिसकी धुन बनाई है एआर रहमान ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, आवाजें कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की है। इस गीत को सुनना चाहा है कागज पुनरेश से महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे, इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे इसी गीत को पसंद किया है। बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनिरुद्ध रेखवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रेखवार और खंडा। और साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर का। और इसी पत्र में दो नाम और हमें दिखाई दे रहे हैं और वो है रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं पुकार फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तेजाब फिल्म से। अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाजें हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और

धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। इस गीत को सुनना चाहा है सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने। राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से ये पत्र है मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रित, ऋषभ राजावत और पूरा राजावत परिवार। और साथ ही साथ ये पत्र छत्रपति संभाजीनगर से मिला है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाकड़, राही सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी ने साथ ही साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का, जयराज प्लॉट राजकोट से इस गीत को पसंद किया है मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, आरती पूजा जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। खलनायक फिल्म का गीत हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया है, आवाज मनहर उदास और अलका याग्निक की है, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत धुन पर अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा ये गीत अलका याग्निक और मनोहर उदास की आवाजों में खलनायक फिल्म से। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से करना चाहते थे। विजय श्रवा चंद्रहासिनी के प्रति आकर्षित तो था, परंतु प्रेम भुवन मोहिनी से ही करता था। इसी बीच संपूर्ण खंड राज्यों के सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा के दरबार में विजय श्रवा ने हूण सेनापति के अपमानजनक पत्र को पढ़ा और आमात्य ऋषभदेव ने युद्ध के स्थान पर अपमानजनक संधि करने की वकालत की। भुवन मोहिनी ये न सुन सकी और उसने आमात्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। हूणों के खिलाफ युद्ध में भुवन मोहिनी विजय श्रवा के साथ छाया की तरह रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। विजय श्रवा ने भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। इससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के मनाने पर सम्राट विजय श्रवा ने अपना आदेश वापस तो ले लिया, परंतु स्वयं मुख्य महल से अलग रहने लगा। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी में।

0: अरे मैं पूछता हूँ, इस तरह अंधेरे में कौन खड़ी है वहां?
1: अरे भुवन मोहिनी, आप कब आई देव?
2: मेरे आगमन को गोपनीय रखिएगा अरण्यक।
1: तो क्या सम्राट को भी न बताऊं?
2: नहीं अरण्यक, सम्राट कुशल तो है ना?
1: उनकी कुशलता के कहने ही क्या। राजप्रासाद से दूर निर्जन क्षेत्र में पर्णकुटी बनवाकर रह रहे हैं। राजकीय अधिकारी और मंत्रीगण शासन संबंधी आदेशों को प्राप्त करने वहीं पर्णकुटी पहुंचते हैं। और हां, राज परिवार के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है।
2: क्या?
1: कभी कभी सम्राट राजमहल जाकर राजमाता से मिल लेते हैं, और वो भी वाह्य कक्ष में। राजकुमार को लेकर संरक्षक अवश्य पर्णकुटी में आ सकता है।

0: समझते हैं। और हां, राज परिवार के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है।
1: क्या?
0: कभी कभी सम्राट राजमहल जाकर राजमाता से मिल लेते हैं, और वो भी बाह्य कक्ष में। राजकुमार को लेकर संरक्षक अवश्य पर्णकुटी में आ सकता है।
1: और साम्राज्ञी?
0: अरे, उनका तो प्रवेश एकदम से निषिद्ध है। कई बार साम्राज्ञी ने पत्रों द्वारा उनसे मिलने की प्रार्थना की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ऊपर से सम्राट ने पत्रवाहक को कड़े निर्देश दे दिए कि भविष्य में वो कभी भी उनके पत्र लेकर ना आए। और इतना ही नहीं देवी, द्वारपाल को निर्देश है कि साम्राज्ञी कभी बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयत्न करें तो उन्हें भी रोक दे।
1: ये कैसा दुर्दैव!
0: देवी, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध होगा यदि मैंने आपके आगमन की सूचना सम्राट को अविलंब न दी तो।
1: परंतु अरण्यक,
0: ये सम्राट के हित में होगा।
2: अरण्यक,
0: हाँ,
2: राजप्रसाद की राजनीति में बड़ी शांति से दिखती है।
0: क्यों सारथी, तुम्हें शांति से कोई कष्ट है क्या?
2: भला मुझे क्यों कष्ट होगा, मुझे तो प्रसन्नता है।
0: नियति को देखो सारथी, जिस देवी भुवन मोहिनी को साम्राज्ञी चंद्रहासिनी क्षण भर को भी सहन नहीं कर पाती थी, वही भुवन मोहिनी अब आराम से सम्राट द्वारा प्रदत्त एक महल में निवास करने लगी, सम्राट की आज्ञा से।
2: यही नहीं, सम्राट को जब इच्छा होती है भुवन मोहिनी को बुलवा लेते हैं और वो दिन दिन भर पर्णकुटी में रहती है, संगीत से सम्राट का मनोरंजन करती है, उनके साथ ही भोजन करती है। अरण्यक, क्या इसका पता साम्राज्ञी और राजमाता को नहीं होगा?
0: क्यों नहीं होगा सारथी, अवश्य होगा, पर वो कर ही क्या सकते हैं। हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मित्र प्रसन्न है। सच पूछो तो सारथी, देवी भुवन मोहिनी का सम्राट के प्रति प्रेम बहुत ही पवित्र है और बहुत ही उदार।
2: तुम ठीक कहते हो अरण्यक,
0: मुझे तो अनुभव हो रहा है कि उनके इस पवित्र प्रेम की सुगंध पूरे वातावरण को और भी सुगंधित बना रही है।
2: परंतु अरण्यक, बहुत दिनों से देवी भुवन मोहिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
0: मुझे ज्ञात है सारथी, कई वैद्य चिकित्सक भुवन मोहिनी को देख चुके हैं, परंतु वो समझ नहीं पाए कि उन्हें रोग कौन सा है। और वर्तमान में मित्र की एकमात्र चिंता का विषय भी यही है। चलता हूं सारथी, मित्र के पास पहुंचने का समय हो गया है।
2: अवश्य अरण्यक।
0: कक्ष के अंदर आ सकता हूं मित्र?
3: अरण्यक, क्या तुम भुवन मोहिनी की आवाज गए थे?
0: अब आपके आदेश को ना मानूं ऐसा कभी हुआ है?
3: कैसी है वो?
0: मित्र, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है, वो लगातार औषधियों की अवहेलना कर रही है। वैद्य के बहुत बाध्य करने पर ही वो कोई औषधि लेती है, परंतु वास्तविक समस्या ये है कि।
3: क्या समस्या है?
0: भुवन मोहिनी किसी से कुछ बोलती ही नहीं, ना तो किसी से बातें करती हैं, ना यही बताती हैं कि उन्होंने औषधि ली या नहीं। मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु शैया में पड़ी भुवन मोहिनी मानो मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर रही हो।
3: नहीं अरण्यक, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे जीवन में उसके ना रहने का क्या अर्थ होगा? माना कि भुवन मोहिनी के बिना मैंने दिन महीने और वर्ष बिताए हैं, परंतु इस आशा में कि एक दिन वो आएगी। परंतु यदि वो।
0: मित्र, देवी भुवन मोहिनी की अस्वस्थता सर्वसाधारण की चर्चा का विषय बन चुकी है। नर्तकी के गृह में जन्म लेने के बाद भी वो अपनी सेवाओं के लिए इतनी राष्ट्रव्यापी ख्याति अर्जित कर चुकी हैं कि अधिकांश जनता उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना कर रही है। जनता की शुभकामनाएं अपना प्रभाव अवश्य दिखलाएंगी। मित्र,
3: हम भी उसे मरने नहीं देंगे। अरण्यक, अरण्यक, मैंने आदेश दिया था कि कोई न कोई सुयोग्य चिकित्सक सदैव उसके पास रहे। आदेश का पालन हो रहा है ना?
0: अक्षरशः पालन हो रहा है मित्र, चिकित्सक सदैव उनके पास।

0: रहते हैं। मित्र, एक रहस्यमयी नारी भी उनके आसपास दिखाई देती है।
1: रहस्यमयी नारी? कौन है वो? क्या कोई चिकित्सक है या परिचारिका या वो दासी है?
0: इनमें से कोई नहीं है मित्र।
1: कोई नहीं है? तो ये बात हमें आज तक बताई क्यों नहीं गई? ना ही किसी चिकित्सक ने और ना ही किसी गुप्तचर ने और ना ही दास दासी ने।
0: क्योंकि साम्राज्ञी का ऐसा ही आदेश था।
1: साम्राज्ञी का आदेश? क्या सरोकार था साम्राज्ञी को भुवन मोहिनी की अस्वस्थता से?
0: मित्र, गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि साम्राज्ञी भुवन मोहिनी के प्रति कृतज्ञता को प्रकट कर आपको प्रसन्न करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ से एक कुशल महिला चिकित्सक को बुलाया है।
1: तो राज्य कार्यालय से पता करो कि क्या इंद्रप्रस्थ से किसी महिला चिकित्सक को बुलाया गया है।
0: मैंने पता लगा लिया है, ऐसी किसी महिला चिकित्सक को इंद्रप्रस्थ से नहीं बुलाया गया है।
1: तो वो कौन है?
0: साम्राज्ञी के शैशव काल की सखी और संबंध में ममेरी बहन।
1: प्रमुख चिकित्सक को अविलंब उपस्थित कराओ।
0: जो आज्ञा मित्र।
1: भुवन मोहिनी की सेवा में लगे प्रमुख चिकित्सक आप हैं?
2: जी हाँ सम्राट।
1: प्रमुख चिकित्सक का क्या दायित्व होता है?
2: रोगी की चिकित्सा और पूरी देखरेख स्वामी।
1: क्या मैं जान सकता हूं कि भुवन मोहिनी ठीक क्यों नहीं हो रही?
2: यही तो समझ में नहीं आ रहा सम्राट। एक से बढ़कर एक औषधियां हम उन्हें दे रहे हैं, परंतु किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
1: आप अपने सामने उन्हें औषधियां खिलाते हैं?
2: जी नहीं।
1: क्यों?
2: इसलिए कि रोगिणी औषधियां लेने में अनिच्छुक दिखती हैं, तो इंद्रप्रस्थ से आई चिकित्सक को, जो सदैव उसके पास ही रहती है, आवश्यक निर्देश दे दिया करता हूं।
1: उसका क्या नाम है?
2: नाम तो उसका नहीं मालूम देव।
1: नाम नहीं मालूम? उसे आपने नियुक्त किया है?
2: नहीं देव।
1: तो फिर किसने नियुक्त किया है उसे? उत्तर दो मुझे।
2: साम्राज्ञी ने।
1: साम्राज्ञी ने? उसके चिकित्सक होने का प्रमाण पत्र देखा आपने?
2: नहीं देव।
1: तो फिर वो चिकित्सक नहीं है?
2: नहीं है।
1: उसकी चिकित्सा नहीं, उसे विष दिया जा रहा है।
2: विष?
1: हाँ विष। एक बात ध्यान रखो चिकित्सक, यदि भुवन मोहिनी के जीवन के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। अब तुम्हें क्या करना होगा तुम निर्णय करो। जाओ यहां से। अरण्यक।
0: बोलिए मित्र।
1: ध्यान से सुनो, अपरिचित महिला चिकित्सक का भुवन मोहिनी के पास रहना भय से रिक्त नहीं। तुम स्त्री वेश में भुवन मोहिनी के समीप रहो, प्रत्येक क्षण देखते रहो कि वो रहस्यमय स्त्री क्या क्या करती है। यदि वो अपनी ओर से कुछ।
0: मैं सब समझ गया मित्र, आगे और बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे आज्ञा दे।

0: मैं स्त्री वेश धारण करके देवी भुवन मोहिनी के आवास में आ गया। कहाँ है भुवन मोहिनी? ओ, वो वहाँ एक पलंग पर लेटी हूँ। उनके पास लगता है वही अपरिचित महिला चिकित्सक है। क्या करूं, चलता हूं वहीं, देखता हूं क्या होता है।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, तुम कौन हो?
1: कमला।
2: कमला, तुम नई आई हो क्या?
1: लो और सुनो, स्वयं नई हो तुम, हमें नई कहती हो?
3: हम तो

0: इतने छोटे थे तब से हैं इस महल में। तुम अपना नाम बताओ।
1: मेरा नाम? मेरा नाम कुमारी विमला है।
0: तुम भी कुमारी? मैं भी कुमारा। मतलब ये कि मैं भी कुमारी। मेरा नाम कमला, तुम्हारा नाम विमला। अच्छा है ना? लगता है जैसे जुड़वा बहने हो।
1: अच्छा अच्छा ठीक है। देखो कमला, मैं कई दिनों से साम्राज्ञी से नहीं मिल पाई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम यहीं रहना और कोई भी वैद्य चिकित्सक आए
0: जो दवाएं कहेंगे मैं दे दूंगी।
1: वो नहीं देनी है।
0: वो नहीं देनी है?
1: अरे तुम कहाँ से आ गई? देखो यहाँ के सभी दासियों को अच्छी तरह ज्ञात है कि जो दवा मैं चाहूंगी वही भुवन मोहिनी को दी जाएगी, यहाँ के वैद्य चिकित्सकों की नहीं।
0: अच्छा, तो क्या तुम भी चिकित्सक हो?
1: हाँ, इसीलिए तो।
0: तो फिर ठीक है, जो तुम कहोगी वही दवा देंगे। लेकिन ये
2: ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
1: हाँ,
0: लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
1: असाध्य रोग है, फिर भी ठीक हो जाएगी, समय लगेगा। अच्छा सुनो, संध्या को आऊंगी और रात में भी रहूंगी, तब तुम चली जाना।
0: ठीक है।
1: तो समझ गई ना?
2: हाँ।
1: ये यहाँ मेरी दवाई रखी है, हर घंटे तुम्हें खिलाना है, पर ध्यान रहे किसी वैद्य के सामने मत खिलाना और उसे ये बताना भी नहीं, वरना समझती हो ना क्या होगा?
0: क्या होगा?
1: तेरी खाल उतर जाएगी।
0: उतर जाएगी? कौन उतारेगा?
1: साम्राज्ञी।
0: क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे खाल नहीं उतरवानी, मैं मात्र तुम्हारी ही औषधियाँ उनको दूंगी, वैद्य चिकित्सकों की नहीं। तुम निश्चिंत रहो।
1: मैं जाती हूँ।
3: जाओ कहीं।

0: अब मैं
1: भुवन मोहिनी को बता दूं कि वास्तव में मैं हूं कौन।
0: ओह, कितनी सूख गई देवी। देवी आंखें खोलिए। देवी भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी देवी।
2: कौन?
0: मैं अरण्यक हूं। मैं
2: अरण्यक?
0: हाँ, अरण्यक ही हूं मैं। आपको षड्यंत्र से बचाने के लिए आया हूं। सम्राट ने भेजा है, आप निश्चिंत रहिएगा। और सुनिए, इस वेश में मेरा नाम कमला है, कमला। जब आप पुकारें कमला कहकर ही पुकारें।
2: ठीक है अरण्यक। सम्राट कैसे हैं?
0: बहुत चिंतित हैं देवी, परंतु अब उनकी भी चिंता समाप्त हो जाएगी। मैं आ गया हूं ना, लीजिए वैद्यों की दी गई दवा खा लीजिए।
2: हाँ, दो।
0: वास्तविक औषधियों के सेवन से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। और हाँ, वो चुड़ैल कोई भी दवा दे तो बिल्कुल मत खाइएगा।
2: उसका नाम विमला है अरण्यक।
0: आप जानती हैं उसको?
2: हाँ, राजकुमारी की ममेरी बहन है। परंतु यहाँ क्यों बुलाया गया उसे, नहीं जानती।
0: आपको मारने के लिए, इससे अधिक मत पूछिएगा, ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है। अरण्यक, देव से कहिएगा हमारी चिंता ना करें।
0: अरे अब किस बात की चिंता, अब सब ठीक हो जाएगा। तनिक ठहरिएगा देवी, मैं बाहर बैठी मोटी मोटी दासियों को रवाना तो कराऊं।
2: अरण्यक, किस षड्यंत्र की बात कर रहे थे? कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? हे प्रभु, यदि अनजाने ही किसी का कुछ बुरा हुआ हो मेरे हाथों, तो क्षमा करना प्रभु।
0: सब कहने लगी कि तुम कौन हो, कहां से आई? मैंने कहा कि साम्राज्ञी की ननिहाल से सब की सब भाग गई।

0: अरण्यक, इस विमला के हाथों मैंने मात्र एक बार औषधि ग्रहण की थी।
1: अच्छा?
0: और परिणाम ये हुआ कि 3 दिनों तक अचेत रही। इसीलिए मैं कोई भी औषधि ले ही नहीं रही थी अरण्यक। इन दासियों को बड़े बड़े उपहार देकर उसने सबको अपने वश में कर लिया था। अरण्यक, आप ना आते तो जीवन का अंत ही दिख रहा था मुझे। अरण्यक, एक काम करेंगे?
1: बोलिए देवी।
0: वो दवाएं जो विमला मुझे देती थी उस संदूक में रखी हैं। आप उन दवाओं को आज ही सम्राट के पास भिजवाकर उनकी जांच करवाइए।
1: ये आदेश तो पहले ही सम्राट मुझे दे चुके हैं, मैं अभी लेके जाता हूं।
2: सम्राट की जय हो।
3: आइए चिकित्सक महोदय, आपने उस रहस्यमयी महिला द्वारा दी गई औषधियों की जांच पूरी की?
2: हाँ सम्राट, और ये प्रमाणित हो चुका है कि वो औषधियां नहीं वरन
3: वरन
2: बहुत ही तीक्ष्ण विष थे सम्राट।
3: वो चिकित्सिका इस समय कहाँ होगी?
1: साम्राज्ञी से भेंट करने उनके महल गई हैं।
3: हमें तुरंत महल जाना है, रथ तैयार करूंगा।

0: अरण्य के इस महल में हमारे प्रवेश को गुप्त रखा जाए।
1: जो आज्ञा मित्र।
2: प्रणाम सम्राट।
1: चुप रहो, कोई अभिवादन नहीं।
0: ये कौन थी?
1: ये संरक्षिका थी इस महल की।
0: अरे सुनो, तुम सभी दासियां यहाँ क्या कर रही हो?
2: साम्राज्ञी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं सम्राट।
0: और साम्राज्ञी कहाँ है?
2: विश्राम निकेतन में।
0: उनके साथ और कौन है?
2: उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला।
0: ओह, वो दोनों वहाँ क्या कर रही होंगी?
2: हम लोगों को ज्ञात नहीं है देव। हाँ, सुनने में आया है कि सुयोग्य चिकित्सिका होने के कारण साम्राज्ञी ने उन्हें इंद्रप्रस्थ से बुलाया है भुवन मोहिनी की चिकित्सा के लिए।
0: आवर्ण्यक।
1: जी।
2: आज साम्राज्ञी के अपशकुनों की भयानक घड़ी उपस्थित है।
3: ठहरो आवर्ण्यक, कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं।
1: हाँ।
4: मैं केवल एक बार ही अपनी दवा दे सकी, इसके पश्चात उसने कोई दवा ग्रहण ही नहीं की। इन दिनों में वो केवल एक ही बार मुझसे बोली भी।
5: अच्छा, क्या कहा उसने?
4: और क्या कहती, दवा देते समय बोली, मैं कोई दवा ग्रहण नहीं करूंगी, मैं अब जीना नहीं चाहती।
5: वो अब जीना नहीं चाहती? तो ये लो।
4: ये क्या है?
5: जिस पात्र में वो दवाओं का सेवन करती हो उसमें इस औषधि को मात्र स्पर्श करा देना।
4: अच्छा,
5: ध्यान रहे, मात्र स्पर्श हो, इतना ही पर्याप्त होगा उसके मरने के लिए।
4: इतना शक्तिशाली विष। इसे मैं अपने वक्ष स्थल में छिपा लेती हूँ।
5: विमला बहन, जब भुवन मोहिनी हमारे पितृग्रह में रहती थी तब वो मुझसे अधिक तुमको चाहती थी और तुम पर पूर्ण विश्वास करती थी। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया था।
4: यहाँ भी उसी विश्वास के साथ मिली थी, किंतु पहली दवाई के बाद संभवतः या तो वो मुझ पर संदेह करने लगी या सचमुच दवा सेवन नहीं करना चाहती, या हो सकता है सचमुच ही उसमें जीने की लालसा न बची हो। हाँ, ये जो कमला

0: नया नाम की नई सेविका आई है। इसे भुवन मोहिनी की दास दासियां तक नहीं जानती, परंतु भुवन मोहिनी का उस पर विश्वास कुछ अधिक ही है।
1: अच्छा, लो ये मूल्यवान हार उसे पहना देना, वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगी।
0: ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है, पहनकर दर्पण में देखूं तो। आहा, इसे मैं क्यों ना धारण करूं बहन।
1: छी, लोभिनी, अरे तुझे मैं ऐसे न जाने कितने हार दूंगी, पहले काम करके तो दिखा। ये हार उसी कमला को देना, संभवतः सम्राट ने उसे विशेष रूप से बुलवाया हो भुवन मोहिनी की देखरेख के लिए।
0: अच्छा ठीक है,
1: ये दूसरा ले, इसे तो अपने लिए रख।
0: ओ मेरी प्यारी बहन,
1: ये उससे अधिक हीरे माणिक वाला है।
0: अच्छा अब मैं जाती हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं है, न जाने पल में क्या हो जाए।
1: ठहर तनिक, मैं किसी दासी के साथ तुझे भिजवाती हूँ। कोई है यहाँ? कहाँ गई सबकी सब?
2: सबकी सब एक स्थान पर इकट्ठी कर दी गई है सम्राज्ञी।
1: सम्राट,

0: साम्राज्ञी को अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं स्वयं कुमारी विमला को पहुंचाने के लिए उपस्थित हूँ। नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
1: वो उधर छुप रही है स्वामी।

0: ठहर चांद डालनी, निकाल वो विष की शीशी, कहाँ छुपा रखी है, निकाल कुलटा।
1: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
0: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो, चल
2: निकाल दोनों हार। कहाँ है?
1: ये है सम्राट।
0: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में भुवन मोहन की 11वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान परिचालन के दिशा निर्देश जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रवास के अंतिम दिन आज केंद्रीय मंत्री विभिन्न जनकल्याणकारी और लोकहित कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शाहपुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट

0: और सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और भोपाल स्थित मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित है। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, मौसम, उम्र और जगह के हिसाब से हम सबकी अपनी प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, लेकिन एक बात जो हम सबके लिए हमेशा एक जैसी रहती है वो है हमारा और हमारे परिवार का स्वस्थ रहना, और इसके लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन बीमारी कभी भी दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती है। श्रोता, अचानक जब कोई बीमारी आ जाती है तब इलाज का खर्च कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी दे। श्रोताओं, इसी सोच के साथ भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार आर्थिक कठिनाई के कारण इलाज से वंचित ना रहे। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित पात्र परिवारों को मिलता है, साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। श्रोताओं, आपका नाम पात्रता सूची में है या नहीं, ये आप आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर या सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान मित्र से जान सकते हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, इसीलिए सही जानकारी रखें, अपनी पात्रता की जांच करें और पात्र बनकर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि स्वस्थ रहकर ही हम खुश रह सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं लव यू जिंदगी।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण और अब कार्यक्रम में वक्त है आज की भेंट वार्ता का। योग और मोटापा इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे हैं आज की भेंट वार्ता, जिसमें विशेषज्ञ हैं डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु और इनसे बातचीत कर रही है अर्चना सक्सेना।
1: श्रोताओं, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा हो, संस्कार हो या सेहत ही क्यों ना हो। उनका हमेशा यही स्वप्न होता है कि उनके बच्चे हर हाल में स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। लेकिन आज के दौर में बच्चों को मोटापे जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु को। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, तो क्या कारण है या ये कहें कि ये किन किन कारणों से हो सकता है?
2: देखिए, कारण तो बहुत सारे होते हैं और सबसे पहले तो हमारे घर से ही शुरू होते हैं वो कारण, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, और इसमें सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, क्योंकि जैसे हम हैबिट डाल देते हैं घर में जिस तरीके से लाइफ स्टाइल की, तो वैसा ही वो परिवार में परिवेश बनता जाता है और कहीं ना कहीं वो एक ड्रॉबैक हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना और सारी चीजें, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एक रीजन बन जाता है। फिर मेडिकल पॉइंट्स भी रहते हैं मोटापे के।
1: अगर हम कंपेयर करें हमारे बचपन के समय की, या ये कहें कि आज के बच्चों से हम पुराने समय के बच्चों की कंपैरिजन करें, तो आज हमें चाहे वो टीनेज वाले बच्चे हों या बढ़ती उम्र के बच्चे हों या फिर छोटे बच्चे हों, सभी में ओबेसिटी का रेशियो कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बच्चों में ये ओबेसिटी का क्या कारण है?
2: देखिए, रीजन बेसिक ये है कि न्यूट्रिएंट्स हमको रेगुलर रूटीन में चाहिए बॉडी के डेवलपमेंट्स के लिए, वो हमको नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है कि टेस्ट पर बच्चे ज्यादा जाते हैं, फास्ट फूड्स ले लिए तो कैलोरीज तो मिल गई, भूख भी दब गई, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए एक्चुअली वो चीजें नहीं मिली। तो जब क्या होता है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगती है, तो भी कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ने लगता है। दूसरा रीजन क्या है कि फिजिकल उत्ता नहीं, क्योंकि आप देखिए एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, वो घंटों बैठा रहेगा, आवाज तक मुंह से नहीं करेगा, और जबकि पहले के जब कंपेयर स्टडी अगर हम करें तो पहले ऐसा नहीं होता था। हम ही लोगों ने पिट्टू और पता नहीं कौन कौन से गेम, पोशम पावर, बहुत सारी चीजें हमने खेली है, लेकिन आज के हमारे बच्चे ये नाम को भी जानते हैं तो उनको तो नाम भी नहीं पता है। तो एक रीजन ये भी है मोटापे का, जो हर एज ग्रुप में हमको देखने के लिए मिल रहा है।
1: अभी आपने जो कारण बताए बच्चों में ओबेसिटी के, तो एज एन एडवाइस टू पेरेंट्स क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके?
2: आप समझाइए बच्चों को कि वो एटलीस्ट थोड़ा सा फिजिकल करें। फिजिकल का मतलब ये कि स्पोर्ट्स में कुछ इंक्लूड हो जाए, कुछ नहीं तो स्टेडियम ज्वाइन करा दीजिए, कुछ भी एक्टिविटी जिसमें उनका फिजिकल हो सके। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स ही बोलते अरे उसके पास तो टाइम कहाँ है, वो पढ़ेगा कि क्या करेगा, तो लेकिन मेरा कहना ये है कि एक डिसिप्लिन और एक टाइम टेबल हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, किसी भी एज ग्रुप का। छोटे से बच्चे की अगर हम आदत डाल देंगे तो वो आप देखिए खुद अपना एक टाइम टेबल मैनेज करेगा, मुझे इतने बजे उठना है, और देखिए सबके पास 24

0: घंटे हैं। वाहनों का मुझे लगता है अंत नहीं है, लेकिन उसी टाइम में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम वाकई में कर सकते हैं। तो हमें ये बच्चों में आदत डालना चाहिए।
1: आपने आहार पोषण खान पान की बात की, तो निश्चित ही खान पान एक बहुत अहम पार्ट होता है हमारी लाइफ स्टाइल का। तो हमें बच्चों को क्या बैलेंस डाइट या क्या संतुलित आहार देना चाहिए जिससे कि उन्हें फिट और हेल्दी रखा जा सके?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे सराउंडिंग्स में ही है इसका आंसर कि जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उनका भरपूर इनटेक करना चाहिए और जितना भी हो सके आप पेट भर के अच्छे से खाना खाइए, ताकि ये नहीं रहे कि थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया, थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया। तो यदि हम एक बार पूरी बैलेंस डाइट लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद ये सारी चीजें अगर हम एक बार में ले लेते हैं तो हमको फिर ऐसी भूख नहीं लगेगी। जैसे लगता है ना टेम्पटेशन हो रहा है अब कुछ खा लो फिर कुछ खा लो, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है वजन को बढ़ाने का। और इससे क्या होता है, जब हमारा वजन बढ़ता है तो मेंटली भी शिथिलनेस हमारी बॉडी में आती है, तो दिमाग भी उतना सोच नहीं पाता, उतना क्रिएटिव नहीं रह पाता। तो अगर क्रिएटिव रहना है तो बॉडी को भी हमें क्रिएटिव और एक्टिव रखना पड़ेगा।
1: ममता जी, जैसे कि बात चल रही है ओबेसिटी यानी कि मोटापे की, तो मोटापे का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या योग इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है?
0: बिल्कुल करता है, और यदि अपन सही योगिक क्रियाएं करेंगे तो आपको मेंटल फिजिकल दोनों रिजल्ट्स मिलेंगे और ब्रेन भी आपका इतना बढ़िया वर्क करेगा और बॉडी हमेशा एनर्जेटिक और रिफ्रेश रहेगी और मोटापा कभी भी बढ़ेगा नहीं, और बल्कि धीरे धीरे बॉडी शेप में आएगी, फेस पे ग्रेस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, साथ ही इम्यून स्ट्रांग होगा। क्योंकि ये सब चीजें वहीं पर दब जाती हैं जब हमारा वेट बढ़ जाता है, माइंड भी डल हो जाता है, लेकिन जब हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं तो ये जो हमारे अंदर की क्वालिटीज हैं वो सारी निखर के बाहर आती हैं और मन भी सुंदर हो जाता है, हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छा वर्क करता है।
1: तो योग से इस समस्या को कम करने में हमें कैसे मदद होगी? कुछ ऐसे आसन हमें आप बता सकते हैं जो कि बच्चों में बढ़ती हुई ओबेसिटी को कम करने के लिए कुछ फायदेमंद हो?
0: बहुत अच्छा हमारा एक आसन का कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। 12 आसन है, सारे स्ट्रेचिंग पोजेज हैं जो कि मेंटल फिजिकल दोनों रिजल्ट देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल हाइट भी बहुत शॉर्ट होती जा रही है, तो ये हमें उसमें भी इम्प्रूवमेंट देता है, साथ ही हमारी मेंटल स्ट्रेंथ में भी हेल्पफुल है। बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग करने के संग क्या होता है, बॉडी का एक फिगर बहुत सुंदर शेप आ जाता है और सुंदरता बढ़ती है। जब सुंदरता हमको अपने आप में हम बहुत सुंदर दिखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग डेवलप होता है, तो बैक बेंचर भी नहीं बनेंगे, फ्रंट में आ जाएंगे। तो वो चीजें सब बच्चों को बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। संगी कुछ थोड़े से प्राणायाम कर लें तो हमारी मेमोरी को भी और कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में सीख लें, एक ही दो सेटिंग में आपको करेक्शन हो जाता है। सूर्य नमस्कार सीख लें और उसको रेगुलर करते रहें।
1: योग और संतुलित आहार का पालन करने से बच्चे भविष्य में भी क्या ओबेसिटी या मोटापे की तकलीफ से या कहीं की उससे जुड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं?
0: बिल्कुल डेफिनेटली। अब हम देखें आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि क्योंकि डेली रूटीन में हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर्स की संख्या रेगुलर बढ़ रही है हमारे पास में, और उसमें मैं बोलूंगी उम्र भी कुछ नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा भी आ रहा है और बड़ा भी आ रहा है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं बच्चे वो भी आ रहे हैं। स्ट्रेस तो सबके ऊपर है, छोटे बच्चे पे भी है, तो कहीं ना कहीं योग हमको इन सब चीजों से बचा लेता है। मेडिकली भी कोई अगर प्रॉब्लम मान लीजिए आ गई है बॉडी में, हेरिडिटी से भी आ जाती है कई बार हमारी गलत आदतों से भी आ जाती है, तो अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो वो भी हम योग से इजिली करेक्शन कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और नॉर्मल बेटर फिट लाइफ को हम जी सकते।
1: जैसे कि आजकल यंग गर्ल्स में हम देखते हैं पीसीओडी या पीसीओएस बहुत ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो क्या योग से इन हार्मोनल इम्बेलेंसिंग्स को ठीक किया जा सकता है? ऐसे कुछ आसन हमें बताएं जो इनके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ममता जी,
0: जैसे मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार वो तो करना ही है, वो कर लीजिए, कम्प्लीट स्ट्रेचिंग पोजेज है, और जैसे पीसीओडी पीसीओएस या फिर स्ट्रेस एंजाइटी ये बहुत सारी चीजें जो यंगस्टर्स में हम अभी देख रहे हैं उसको रिलीव करने के लिए ध्यान मुद्राएं कुछ आसन वज्रासन सुप्त वज्रासन जैसे आपने बोला कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस को मेंटेन करने के लिए तो सुप्त वज्रासन है मत्स्य आसन है अर्ध मत्स्य इंद्रासन ये कुछ आसन ऐसे हैं थोड़े से ट्विस्टिंग पोजेज हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं पर इनका अभ्यास यदि करते हैं तो ये रिजल्ट्स जबरदस्त देते हैं। मतलब आपको कभी भी वो प्रॉब्लम रिवाइज ही नहीं होगी और बल्कि क्योर हो जाएगी और नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। लेकिन फिर यही बोलूंगी कि एक बार कि हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो हमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, फिर आप देखिए इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपकी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी।
1: जैसे कि अभी हमने बात की यंग गर्ल्स की, वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है जो यंगस्टर्स हैं कहीं भी बैठे हुए हार्ट अटैक आ गया, चलते हुए हार्ट अटैक आ गया, डांस करते हुए आ गया, और उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो क्या कारण है और उनके लिए योग कैसे फायदेमंद हो सकता है?
0: मेरे ख्याल से प्रश्न तो सबके दिमागों में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं।

0: अपन उस व्यक्ति को जानते हो ना जानते हो, लेकिन एक झटका सबको लगता है। फिर एक बेसिक रीजन यहीं पर है, हमारी लाइफ स्टाइल और हेरिडिटी। अगर आपको लगता है कि आपके हेरिडिटी में इस टाइप के केसेस कंटिन्यू हर पीढ़ी में हो रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए अवेयर हो जाइए, कुछ करिए। कुछ करिए का मतलब ये कि आप योगिक क्रियाएं करिए, जिससे किसी भी चीज को देखिए पोस्टपोन कर सकते, वो हमारे हाथ में है। जैसे ऊपर वाले ने जीवन तो आपको दिया, लेकिन जो जीवन हम जी रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है। हम कैसा जी रहे हैं? हम अंतिम समय पर 10-15 लोगों की सेवा लेके जा रहे हैं, 10-15 की सेवा करते हुए जा रहे हैं, निर्धारित हमारे ऊपर है। तो वही बस चीज को फॉलो करें कि हमारा बैकग्राउंड में क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। या मान लीजिए अगर आपको किसी को भी बीपी थोड़ा भी हो गया, उम्र की बात नहीं कर रही हूं मैं, किसी भी उम्र में, तो हम उसके लिए अवेयर हो जाएं, डॉक्टर का गाइडेंस बराबर लें, जो उनकी गाइडेंस है उसको प्रॉपर करें, हम फिजिकल प्रॉपर करें, यौगिक क्रियाएं गुरु के मार्गदर्शन में करें। ये नहीं कि हम कई बार क्या होता है घर में ही बैठ करके करें, पता चला बीपी इतना शूट अप हो गया, वही आप फ्रेंट हो गए, तो कोई भी ऐसा रिस्क ना लें फिर। और अपनी मॉनिटरिंग पूरी करते हैं, अपना एनालिसिस पूरा, थक गए तो रेस्ट करें, ऐसा नहीं कि फिर भी करे जा रहे हैं। तो एक्सेस भी नुकसान करता है और कुछ भी न करना भी नुकसान देता है। तो दोनों चीजों में हमको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है।
1: यदि बच्चों को हमें योगाभ्यास प्रारंभ कराना है ममता जी, तो उसकी सही उम्र क्या है और उसे कैसे प्रारंभ कराया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो बोलती 5 साल के बच्चे से ही शुरू कर दे योग, तो कहीं पर कोई हमें दिक्कत आएगी ही नहीं, हमारा बच्चा भी स्वस्थ, हम भी हैप्पी, फैमिली भी खुश और कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों को क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है क्योंकि ग्रोइंग एज है, तो उनको क्या होता है कि मूवमेंट्स बहुत, मतलब इतने बढ़िया सुंदर आसन करेंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन, पर अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर एक बार आ गई बॉडी में तो जीवन भर आनंद देगी वो तो। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब जागे जब सवेरा। मान लीजिए इतनी उम्र में नहीं शुरू करा, लेकिन हमें जब समझ में आया हम तभी शुरू कर लें।
1: बिल्कुल। अब एक और प्रश्न ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे कॉमन आसन योग के जो हर व्यक्ति कर सकता हो और फायदेमंद भी हो।
0: देखिए सबसे मुख्य है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण प्लस आयाम, एडिशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्राणायाम। तो प्राणायाम से हम शुरू करें, कोई भी उम्र हो, और कुछ पर्टिकुलर आसन जैसे वज्रासन है, मत्स्य आसन है, मार्जरी आसन है। एक्चुअली योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है, बंद मुद्राएं भी हैं। तो हम इनके संग थोड़ा सा अभ्यास उसका भी अगर कर लें, तो जो हमारे इंटरनल रिएक्शंस और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो रिएक्शन फंक्शनिंग है प्रॉपर अगर हो गया तो फिर बहुत बेस्ट रहता है। तो कुछ आसन है थोड़े बहुत कर लें, सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन कर लें, पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1, 2, 3, ऐसे 2-3 सीरीज हैं, उत्तान पादासन की सीरीज है। और जैसा मैंने पहले भी बोला सूर्य नमस्कार, उसमें कंप्लीट 12 आसन का जो एक स्ट्रेचिंग पोजेज है वो बहुत जबरदस्त लाभदायक है। कुछ थोड़ा सा एक पैकेज टाइप का 10-15 मिनट का भी बना लेंगे ना, तो वो हमको कंप्लीट बेनिफिट देगा।
1: ममता जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 24 घंटे में से सिर्फ 45 मिनट ऐसे निकाल लीजिए कि आप योगिक क्रियाएं कर लें, कुछ फिजिकल कर लें, सारी बीमारियां दूर, फिट और फाइन। जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे वो 45 मिनट में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो मेंटल फिजिकल दोनों शानदार हो जाएगा। जीवन शैली को सुधार लें, जीवन शैली सुधर गई, खाना पीना सुधर गया, तो मतलब मुझे लगता है उससे अच्छा फिटनेस तो कुछ और होगी ही नहीं।
1: इतनी अच्छी और सार्थक जानकारी देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।
2: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे योग और मोटापा विषय पर भेंटवार्ता। श्रोताओ आज की भेंटवार्ता का संदेश यही है कि मोटापे से घबराने की नहीं, सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो योग को अपनी जीवन शैली में अपना शामिल करें और यूं ही आगे चलते रहें।

श्रोता, हम बात कर रहे हैं हमारे हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य और विज्ञान की उन नई तकनीकों की जो हमारे जीवन को सुरक्षित, आसान और बेहतर बना रही हैं। आज की दुनिया में तकनीक सिर्फ हमारे मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों और हमारे घर में प्रयोग होने वाली मेडिकल उपकरणों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेस ने इलाज को तेज, सटीक और सुविधाजनक बनाया है, और जब तकनीक आगे बढ़ती है तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है। इसीलिए इन डिवाइसेस की साइबर सिक्योरिटी की जाती है। श्रोता, आज अस्पतालों में हार्ट मॉनिटर, इंसुलिन पंप, पेसमेकर, एमआरआई मशीन और कई अन्य उपकरण डिजिटल तकनीक से संचालित होते हैं। इनमें मरीजों की महत्वपूर्ण जानकारी भी जुड़ी रहती है। श्रोताओं, ये उपकरण जब कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो उनकी सुरक्षा करने के लिए जो तकनीक उपाय किए जाते हैं उसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। या यूं कहें कि जैसे हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस और उनसे मरीजों की जो जानकारी है उसे सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। डिवाइस के सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट कर सुरक्षित पासवर्ड, विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर सुरक्षा परीक्षण से इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी की जाती है। श्रोता, अगर आप भी घर में किसी ऐसे स्मार्ट हेल्थ डिवाइस का उपयोग करते हैं तो डिवाइस को समय समय पर अपडेट करते रहें, आधिकारिक ऐप और लिंक का ही प्रयोग करें, क्योंकि जब तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग हो तो उम्मीदें भी नई उड़ान भरती हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है। ये मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं स्वास्थ्य के लिए नई चुनौतियां भी लेकर आता है। श्रोताओं, कुछ आदतों को बदलकर हम बारिश में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। साफ पानी, ताजा भोजन, हाथों की स्वच्छता और मच्छरों से बचाव ही इस मौसम में सुरक्षा कवच का काम करता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन को। नमस्कार।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

इसके साथ ही इंटरवल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में अर्चना खरे से बुंदेली लोकगीत।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे रत्नेश दुबे से ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

दूसरा आदमी सुनकर गीत अभी आपने सुना है लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार थे मजरूर, संगीत था राजेश रोशन का।

हमने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री मोदी अपना दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर परियोजनाओं 440 मेगावाट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, पावर परचेज एग्रीमेंट और 1,553,98,00,000 रूपये की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला की उपस्थिति में भोपाल में 440 मेगावाट के मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। उन्होंने बताया कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। इस परियोजना में 2.70 रूपये प्रति यूनिट की दर निविदा पर प्राप्त हुई है, जो देश में न्यूनतम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले नौ सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश के आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय रिश्तों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अभी इसकी आमद नहीं हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को मंदसौर और रतलाम में तेज बारिश हुई, जबकि रतलाम में आधा इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन और छतरपुर सहित कई जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से हो चुकी है। अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दल पहुंच रहे हैं। खंडवा जिले में आमा खुजरी जंगल में वन भूमि पर दोबारा हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आज सुबह प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। वन, राजस्व और पुलिस विभाग के करीब 600 अधिकारी कर्मचारी सुबह 7 बजे से 30 जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई में जुटे हैं। पन्ना पुलिस ने तत्परता निभाते हुए पवई थाना क्षेत्र से अपहृत एक कपड़ा व्यापारी के 20 वर्षीय बेटे को रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की पहचान कर ली है, जो फिलहाल फरार हैं। खरगोन जिले की बड़वाह के पास चोरन नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से बीच धारा में फंसे इंदौर के 3 युवकों को स्थानीय पुलिस ने अस्थायी रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति

0: सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरामतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड है, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण

0: भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा के उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्ट्राक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये

थी, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूरत, लाबरिया भेरू, इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल, केतन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतिंग बिरक, मीका बिरक, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है त्रिशूल फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, गीतकार हैं साहिर और संगीत है खयाम का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत सुनना चाहते हैं हमारी ये साथी कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली मीना।

श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनूराज श्रीमाली और खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र, सन्मति पंचोलिया और धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, काफिर, स्वाति माखीजा, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है। और ये प्यारा सा गीत है ये फिल्म आसपास से, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शे और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर की और गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं सिंहपुर बरा से राजेश नीमा, संगीता भावना प्राची नीमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जास्मीन प्रयागराज भट्ट, अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत आरडी बर्मन का। और सुनना चाहते हैं बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, और ये साथी हैं बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी और प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, ये दो साथी हैं हमारे नांदेड़ महाराष्ट्र से।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी साथियों ने। ये साथी हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य बक्सर से, और भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं आन मिलो सजना इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। इसके बाद वे दौरा संपन्न कर दिल्ली रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रावधान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंच रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग ने आज उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में 4 इंच और उससे अधिक

शाम 5:33 पर और 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। प्रादेशिक समाचार दर्शन 6:45 पर आप सुनेंगे। और आजकल 6:40 पर

सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा आज रात 8 बजे, 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत, 9:30 पर सुनिए पब्लिक स्पीक जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, रात 10 बजे आप सुन सकते हैं रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और रात 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट से राग यमन कल्याण में ख्याल गायन।

मीडिया 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:03 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम के समय में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

मोबाइल ऐप प्रसार भारती न्यूज ऑन एआईआर और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत तस्वीरें पेश करती है। घने वर्षावन, दुर्लभ वन्य जीव, रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर आवाज, अनगिनत पेड़ पौधे और जीवन से भरपूर वातावरण, मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता यहीं समेट दी हो।
1: लेकिन विडंबना यह है कि आज यही क्षेत्र जलवायु परिवर्तन को और उसकी कटाई को बढ़ते प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
0: इन्हीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व को समझाने और इनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जून यानी आज की ही रोज अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के ये वाणी कार्यक्रम में। मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ अभिदीप सुहाने और मेरे साथ हैं
1: आस्था द्विवेदी।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: अभिदीप, ये तो बताओ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है?
0: बिल्कुल आस्था, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का पूरा भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। भारत का लगभग आधा भूभाग भी इसी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ विविध जलवायु, घने वन, समृद्ध जैविक विविधता और कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं।
1: अच्छा, तो यही कारण है जिस वजह से भारत को दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में गिना जाता है।
0: दोस्तों, दुनिया की लगभग 40% आबादी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहती है, जबकि पृथ्वी की लगभग 80% जैव विविधता भी यहीं पाई जाती है।
1: अमेज़न के विशाल वर्षावन, इंडोनेशिया के घने जंगल।

0: भारत के पश्चिमी घाट और सुंदरवन जैसे क्षेत्र न केवल लाखों जीव जंतुओं और वनस्पतियों का घर हैं, बल्कि पूरी पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन हर वर्ष अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर समाहित कर जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें धरती के फेफड़े भी कहा जाता है।
0: लेकिन लगातार हो रही वनों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण और बदलती जलवायु इन क्षेत्रों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं।
1: दोस्तों, इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 में 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में घोषित किया।
0: इस दिवस का उद्देश्य केवल इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि इनके संरक्षण, सतत विकास और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना भी है।
1: इसलिए ये दिवस हमें संदेश देता है कि यदि हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित पृथ्वी देना चाहते हैं, तो पृथ्वी के इस अनमोल खजाने का संरक्षण आज ही करना होगा,
0: क्योंकि जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे तभी हमारी पृथ्वी संतुलित और सुरक्षित रह पाएगी।
1: तो साथियों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की पहली चर्चा, विषय अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस पर। कार्यक्रम में अब लेते हैं छोटा सा अंतराल, अंतराल के बाद ले चलेंगे आपको हमारे अगले कार्यक्रम की ओर।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों, कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है दिन सोमवार और आज हम आपके लिए लेकर आते हैं सवाल हमारे जवाब आपके कार्यक्रम, जो कि आप सभी का बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है।
0: तो सबसे पहले हमारे साथियों को बता देते हैं सवाल हमारे जवाब आपके अंक 126 के प्रश्न और उनके सही उत्तर।
1: बिल्कुल आस्था,
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था?
1: इसका सही उत्तर है धनानंद।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
1: इसका सही उत्तर है बिहार।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे?
1: इसका सही उत्तर है मिखाइल गोर्बाचेव।
0: हमारा चौथा प्रश्न था, द्विवेदी युग में कौन सी भाषा कविता की संवाहिका बनी?
1: इसका सही उत्तर है खड़ी बोली।
0: हमारा पांचवा प्रश्न था, आत्मपरिचित कविता के रचयिता कौन है?
1: इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन।
0: हमारा छठा प्रश्न था, किसी वेबसाइट पर यूजर की प्राथमिकताओं को याद रखने वाली छोटी टेक्स्ट फाइलें क्या कहलाती हैं?
1: इनका सही उत्तर है कुकीज।
0: हमारा सातवां प्रश्न था, 2027 का AFC एशियाई कप किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है?
1: इसका सही उत्तर है सऊदी अरब।
0: हमारा आठवां प्रश्न था, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है और भूख, प्यास एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है?
1: इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस।
0: हमारा नौवां प्रश्न था, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का दृश्य प्रकाश सबसे कम विचलित होता है?
1: इसका सही उत्तर है लाल रंग का।
0: हमारा दसवां और अंतिम प्रश्न था, समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली सामान्य और निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है?
1: इसका सही उत्तर है मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन या महंगाई।
0: तो साथियों, हमें इसके लिए बहुत सारे पत्र प्राप्त हुए हैं, हमारे श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमें कौन कौन से पत्र प्राप्त हुए हैं और हमारे किन श्रोताओं ने हमें पत्र भेजे हैं।
1: बिल्कुल आस्था, तो साथियों हम आपको बता दें कि हमें 10 में से एक सही जवाब वाला एक पत्र प्राप्त हुआ है, जो है पन्ना मध्य प्रदेश से AK पांडे जी द्वारा। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं AK पांडे जी के कि आपने प्रयास किया और हम चाहेंगे कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। अब साथियों, बढ़ते हैं हमारे 10 में से दो सही जवाब वाले पत्रों की ओर, जो हमें एक भी प्राप्त नहीं हुआ है। साथियों, आपको बता दें कि 10 में से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सही जवाब वाले हमें एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। आइए बढ़ते

0: हैं 10 में से 10 सही जवाब वाले पत्रों की ओर।
1: इसमें हमें पहला पत्र प्राप्त हुआ है नवागढ़ कटई जिला बेमेतरा से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत और पुष्पांजलि वर्मा का।
0: अगला पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है वो है पतरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल द्वारा।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ततरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी तुषारिणी और खुमेंद्र मसीहा द्वारा।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है बोरसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू द्वारा।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमुरिया, अजय देव, तुषार देव, टॉली बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा द्वारा।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पीपरलोर सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, भरत, बंटी और बबली वर्मा द्वारा।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुलिता, आशुतोष अंगारे का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है दुर्ग छत्तीसगढ़ से आरसी कामड़े, करुणा, मीणा, अश्विनी और विपुल कामड़े द्वारा।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है कोयलारी छत्तीसगढ़ से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेन्द्र और साहिल चंद्राकर द्वारा।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है करवधा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, नयन और सुमांशु पांडे द्वारा।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम गुढ़ाराज छत्तीसगढ़ से पेंटर मनोज साहू, श्रीमती चित्रेखा, देवेंद्र, लवीना, चंचल, वासनी और गरिमा साहू का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का।
1: अगला पत्र और ये हमारा अंतिम पत्र जो हमें प्राप्त हुआ है दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन एले और नवदीप एले का।
0: तो साथियों ये थे हमारे 10 में से 10 सही जवाब वाले वो पत्र जो हमारे श्रोताओं ने हमें भेजे हैं ईमेल के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से। आइए ले चलते हैं आपको विजेता की चुनाव की ओर। तो आस्था मेरे पास में ये कुछ पर्चियां हैं, इनमें से आप एक पर्ची निकालिए और चुनिए हमारे आज के विजेता कौन है।
1: तो मैंने ये पर्ची उठा ली है और इसमें नाम आया है अडार नागघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा का।
0: साथियों आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आज के हमारे विजेता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सुनवाते हैं हमारे विजेता को उनकी पसंद का गीत। तो आइए सुनते हैं हमारे विजेता की श्रोता की पसंद का गीत। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि आप गीत के दौरान अपने साथ में पेन और कॉपी रख लीजिएगा ताकि हम आपको गीत के बाद सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 के प्रश्न बता सकें। लीजिए सुनिए हमारे श्रोता की पसंद का ये गीत।

0: तो साथी उम्मीद है आप सभी पेपर और कॉपी यानी कि पेपर और पेन लेकर बैठ गए होंगे। आइए अब आपको ले चलते हैं सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 के प्रश्नों की ओर।
1: हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम क्या है।
0: हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है।
1: हमारा पांचवा प्रश्न है, वही होता है जो मंजूर ए खुदा होता है, ये किसके द्वारा दी गई पंक्ति है।
0: हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संसद का नया भवन किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया।
1: हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारत में आयोजित AI एक्शन समिट का मेजबान कौन सा देश रहा।
0: हमारा आठवां प्रश्न है, वृक्ष कटिकम किसके द्वारा लिखी गई रचना है।
1: हमारा नौवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है।
0: हमारा सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 का दसवां और आखिरी प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है।
1: साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 471001।

0: साथियों, आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है yuthchhatarpur@gmail.com।
1: इसके लिए हमें आपके पत्र 6 जुलाई 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें।
0: आइए साथियों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की अगली चर्चा की ओर। विषय है संत कबीर जयंती। तो साथियों, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपन, चले हमारे साथ।
1: यह दोहा हमें अपने भीतर के अहंकार, बुराइयों और नकारात्मक सोच को त्याग कर सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। संत कबीर के यही विचार आज भी युवाओं के लिए उतने ही प्रेरणादायक हैं जितने सदियों पहले थे। इसी कारण हर वर्ष संत कबीर जयंती के अवसर पर उनके जीवन, विचारों और शिक्षाओं को याद किया जाता है।
0: साथियों, संत कबीर 15वीं शताब्दी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन काशी में हुआ था।
1: संत कबीर अधिक शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनके दोहे आज विश्वविद्यालयों तक में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाएं ऐसी सरल भाषा में लिखी जिसे आम व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। यही कारण है कि उनके विचार केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी अध्ययन का विषय है।
0: साथियों, संत कबीर ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके शिष्यों ने उनके दोहों और वचनों को संकलित करके बीजक नामक ग्रंथ तैयार किया, जिसे कबीर पंथ का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है।
1: संत कबीर के गुरु स्वामी रामानंद माने जाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार कबीर ने गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटकर उनसे गुरु मंत्र प्राप्त किया। जब रामानंद जी के मुख से राम राम निकला तो कबीर ने उसे ही अपना गुरु मंत्र मान लिया। यह प्रसंग उनके गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है।
0: साथियों, आज जब समाज दिखावे, तनाव और आपसी मतभेदों से जूझ रहा है, तब संत कबीर की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। उनके दोहे हमें सिखाते हैं कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना जरूरी है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है।
1: संत कबीर जयंती केवल एक महान संत को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का भी अवसर है।
0: यदि हम युवा उनकी सत्य, सादगी, आत्मविश्वास और मानवता के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हम न केवल सफल नागरिक बनेंगे बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही संत कबीर की शिक्षाओं का सबसे बड़ा संदेश है। आइए साथियों, कार्यक्रम में अब आपको ले चलते हैं वार्ता की ओर। विषय है वीरांगना रानी दुर्गावती, वार्ताकार है रीना चतुर्वेदी।
2: भारत भूमि वीरों और वीरांगनाओं की भूमि रही है। इस मिट्टी ने ऐसे कई सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन जब बात स्वाभिमान, नारी शक्ति, अदम्य साहस और मुगलों के अहंकार को चूर चूर करने की आती है, तो इतिहास के पन्नों पर एक नाम स्वर्ण अक्षरों में चमकता है, जो है गोंडवाना की सेनी वीरांगना रानी दुर्गावती। उनके सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। गोंडवाना की शान थी वो, राजपूती संतान थी वो, झुकना जिसने सीखा नहीं, साक्षात वीरता की पहचान थी वो। आज हम सब यहाँ भारत की उसी महान बेटी को नमन करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध चंदेल राजवंश के राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय के यहाँ कालिंजर के किले में हुआ था। क्योंकि उनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। और सचमुच वे अपने नाम के अनुरूप ही साक्षात देवी दुर्गा का रूप साबित हुई। बचपन से ही दुर्गावती की रुचि आम लड़कियों की तरह गुड्डी गुड़ियों के खेल में नहीं थी। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला का शौक था। वे अपने पिता के साथ शिकार पर जाया करती थी। इतिहासकार बताते हैं कि वे इतनी कुशल निशानेबाज थी कि जिधर भी निशाना साधती थी

शिकार बचकर नहीं जा सकता था। वे शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों में भी निपुण थी। उनका साहस और उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी। जब रानी दुर्गावती विवाह युग्म हुई तो उनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य की राजा संग्राम सिंह संग्राम शाह के प्रतापी पुत्र दलपत शाह से हुआ। इस विवाह से दो महान संस्कृतियां चंदेल और गोंड राजवंश एक साथ आए। विवाह के बाद रानी दुर्गावती गढ़ मंडला जो कि जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है वहां आई, जहां उनका बहुत सम्मान हुआ, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद जब उनका पुत्र वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, राजा दलपत शाह का असामयिक निधन हो गया। पूरे राज्य पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक युवा महिला जिसका पति चला गया हो, जिसके पास एक छोटा बच्चा हो, वह चाहती तो टूट सकती थी, लेकिन दुर्गावती साधारण महिला नहीं थी। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने छोटे बेटे वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर खुद उसकी संरक्षिका बनी और गोंडवाना की कमान अपने हाथों में ले ली। रानी दुर्गावती केवल एक महान योद्धा ही नहीं थी, बल्कि वे एक बेहद दूरदर्शी और कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने अपने 16 वर्षों के शासनकाल में गोंडवाना को समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। उनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी और समृद्ध थी कि लोग लगान सोने के सिक्कों और हाथियों के रूप में चुकाते थे। उन्होंने अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए कई कुएं, बावड़ियां और विशाल तालाब बनवाए। जबलपुर का प्रसिद्ध चेरी ताल, रानी ताल और आधार ताल आज भी उनकी इसी दूरदर्शिता के गवाह हैं। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण में कभी भेदभाव नहीं किया। वे सभी धर्मों का सम्मान करती थी। उनकी सेना में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक और अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने अपनी राजधानी को सिंगौरगढ़ से हटाकर चौरागढ़ स्थानांतरित किया, जो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित एक सुरक्षित किला था। उनके इस कुशल शासन की कीर्ति दिल्ली के मुगल दरबार तक पहुँचने लगी थी। अब इतिहास का वो पन्ना आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन था। अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत पूरे भारत को जीतना चाहता था। जब उसने गोंडवाना की समृद्धि और एक महिला के शासन के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। अकबर ने अपने एक क्रूर सूबेदार आसफ खान को एक विशाल सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी, उनके पास आधुनिक हथियार और तोपें थी। दूसरी ओर रानी दुर्गावती की सेना छोटी थी। जब रानी को इस आक्रमण की सूचना मिली तो उनके मंत्रियों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने या संधि करने की सलाह दी, लेकिन रानी दुर्गावती का स्वाभिमान इसकी गवाही कैसे देता। उन्होंने गरजते हुए कहा, दासी बनकर जीने से अच्छा है कि सम्मान के साथ युद्ध के मैदान में मर जाना। रानी दुर्गावती ने युद्ध का विगुल फूंक दिया। उन्होंने जबलपुर के पास नर्राई नाले के किनारे अपनी सेना खड़ी की। उन्होंने खुद युद्ध का नेतृत्व किया। वे पुरुष वेश धारण कर हाथ में तलवार लेकर अपने हाथी सरमन पर सवार होकर मुगलों पर टूट पड़ी। पहले दिन के युद्ध में रानी दुर्गावती की रणनीति और वीरता के सामने मुगल सेना टिक नहीं सकी। रानी ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन मुगलों ने भारी तोपखाने के साथ फिर हमला किया। रानी का बेटा वीर नारायण भी इस युद्ध में वीरता से लड़ा और घायल हो गया। रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर भिजवाया और खुद अकेली ही मोर्चे पर डटी रही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 24 जून 1564 का वो दिन भारतीय इतिहास का सबसे भावुक और गौरवशाली दिन है। युद्ध लड़ते लड़ते एक तीर रानी की आंख में आकर लगा। रानी ने उस तीर को खींचकर निकाल फेंका, लेकिन उसकी नोक आंख के अंदर ही रह गई। कुछ ही देर बाद दूसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंसा। रानी लहूलुहान हो चुकी थी, वे होश खो रही थी। उनके वफादार सैनिकों ने उनसे कहा कि महारानी, चलिए आपको युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन रानी जानती थी कि यदि वे यहाँ से गए तो मुगल उन्हें जीवित पकड़ लेंगे। अकबर की कैद में जाकर अपमानित जीवन जीने से बेहतर उन्होंने मौत को गले लगाना सही समझा। उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि वे उनकी ही तलवार से उनका शीश काट दें, लेकिन सेनापति के हाथ कांप गए। तब वीरांगना रानी दुर्गावती ने
अपने ही कटार निकाली और अपनी छाती में घोंप ली। एक महिला ने, एक रानी ने, एक

0: माँ ने मुगलों के सामने सिर झुकाने के बजाय अपनी मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वे अमर हो गईं। साथियों, रानी दुर्गावती का यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि आज 21वीं सदी में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो रानी दुर्गावती हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सदियों पहले दिखा दिया था कि भारत की नारी केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर वह शासन भी चला सकती है, अर्थव्यवस्था भी संभाल सकती है और हाथ में तलवार उठाकर दुश्मनों के छक्के भी छुड़ा सकती है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था वीरांगना रानी दुर्गावती। वार्ताकार थी रीना चतुर्वेदी।
2: आइए साथियों, आपको ले चलते हैं कार्यक्रम की अगली चर्चा की ओर। इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि उन महान व्यक्तियों की विरासत भी होता है जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता से आने वाली पीढ़ियों के लिए नई मिसाल कायम की।
1: भारतीय इतिहास में ऐसा ही एक नाम है, शेरे पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह। उनकी पुण्यतिथि हमें उस महान शासक को याद करने का अवसर देती है जिसने केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि न्याय, समानता और धार्मिक सौहार्द की ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी प्रेरणा देती है।
2: साथियों, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है।
1: बचपन में चेचक के कारण उन्होंने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी थी, लेकिन इस कठिनाई ने उनके साहस और आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मात्र 21 वर्ष की आयु में वर्ष 1801 में उन्होंने लाहौर में महाराजा के रूप में राज्याभिषेक कराया और सिख साम्राज्य की स्थापना की।
2: साथियों, महाराजा रणजीत सिंह का शेरे पंजाब की उपाधि उन्हें अद्भुत साहस और नेतृत्व क्षमता के कारण मिली। उनके शासन का विस्तार पंजाब, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान तक था। उन्होंने सिख मिसलों को एकजुट कर उत्तर पश्चिमी भारत में एक मजबूत और संगठित साम्राज्य की स्थापना की।
1: महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में सिख, हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय अधिकारी भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते थे। उनके लिए किसी व्यक्ति का धर्म नहीं बल्कि उसकी योग्यता सबसे अधिक मायने रखती थी। यही कारण है कि उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे उदार और धर्मनिरपेक्ष शासकों में गिना जाता है।
2: साथ ही उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए फ्रांस और इटली के सैन्य विशेषज्ञों की सहायता ली थी। उनकी सेना खालसा फौज के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसे उस समय एशिया की सबसे अनुशासित और आधुनिक सेनाओं में गिना जाता था।
1: महाराजा रणजीत सिंह का निधन 27 जून 1839 को लाहौर में हुआ था। उनके निधन के लगभग 10 वर्ष बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने अधीन कर लिया और सिख साम्राज्य का अंत हो गया।
2: साथियों, महाराजा रणजीत सिंह केवल एक विजेता राजा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक, कुशल सैन्य रणनीतिकार और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले शासक भी थे।
1: उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि किसी भी नेता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और अपनी प्रजा का विश्वास होती है।
2: यही कारण है कि शेरे पंजाब यानी महाराजा रणजीत सिंह का नाम आज भी भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो साथियों, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम चर्चा महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पे। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवा देते हैं मनोरंजन के लिए ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी हमने सुना ये प्यारा सा गाना जो था जन्नत फिल्म से, जिसमें आवाज थी केके की।
1: सईद कादरी के बोलों को संगीत में पिरोया था प्रीतम चक्रवर्ती ने। आइए साथियों, कार्यक्रम में अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना।
0: DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
1: पदों की कुल संख्या है 1979।

0: शैक्षणिक योग्यता है पदों के अनुसार भिन्न भिन्न।
1: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से 21 वर्ष, अधिकतम 30 से 35 वर्ष, पदों के अनुसार अलग अलग है। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी।
0: आवेदन की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथियों, एक बार हम आपको पुनः सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 के प्रश्न दोहरा देते हैं।
0: हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
1: हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है?
0: हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम क्या है?
1: हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है?
0: हमारा पांचवा प्रश्न है, वही होता है जो मंजूर एक खुदा होता है, ये किसके द्वारा दी गई पंक्ति है?
1: हमारा छठवां प्रश्न है, भारत की संसद का

0: हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम क्या है?
1: हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है?
0: हमारा पांचवा प्रश्न है, वही होता है जो मंजूर एक खुदा होता है, ये किसके द्वारा दी गई पंक्ति है?
1: हमारा छठवां प्रश्न है, भारत की संसद का नया भवन किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया?
0: हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारत में आयोजित AI एक्शन समिट का मेजबान कौन सा देश था?
1: हमारा आठवां प्रश्न है, वृक्ष कटिकम किसके द्वारा लिखी गई रचना है?
0: हमारा नौवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है?
1: हमारा दसवां और आखिरी प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पत्र भेजने का पता है, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 127 वाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 471001। इसके अलावा आप हमें ईमेल के माध्यम से भी पत्र भेज सकते हैं, जिसका ईमेल एड्रेस है yuthchatarpur@gmail.com। इसी के साथ ही साथियों, वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। मैं जुड़ा हुआ था आपके साथ अभिदीप सुहाने और मेरे साथ थी
0: आस्था द्विवेदी।
1: अब दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। मोबाइल ऐप प्रसार भारती न्यूज एन आईआर और मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5:40 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए बॉम्बे टाकीज फिल्म का गीत मोहित चौहान की आवाज में। गीत है स्वानंद करकरे का, संगीतबद्ध किया है अमित त्रिवेदी ने।

0: मोहित चौहान को अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टाकीज फिल्म में। गीत था स्वानंद किरकिरे का, संगीतबद्ध किया था अमित त्रिवेदी ने। लीजिए सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को प्रीतम के संगीत निर्देशन में। आवाज है विशाल दलानी और भारती की। फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।
1: पलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो

लीजिए सुनिए फुकरे फिल्म का गीत, क्लिंटन सेरेजो, कीर्ति सगाथिया और राम संपत की आवाज में। गीत है मुन्ना धीमान का, संगीतबद्ध किया है राम संपत ने।

15 मिनट के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में और रात 10 बजे मन भवन कार्यक्रम में। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। शाम 6 बजे भोपाल से होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे पवन यादव। ढोलक पर इनके साथ संगत करेंगे मुकेश रजक, बैंजो पर जब्बार खान और झिंका पर बाबू रैकवार। शाम 7:20 पर ग्रामसभा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा होगी वार्ता, विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वार्ताकार विनीत कुमार जायसवाल से। साथ ही होगी आज की सीख। रात 8 बजे भोपाल से होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर फिल्म संगीत होगा। दिल्ली से आज आप सुनेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक और रात 10 बजे हम लेकर आएंगे श्रोताओं के डाक पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये थे सभा के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में सुनिए बुंदेली किस्सा, सुरहिंद गऊ, किस्साकार ओम प्रकाश तिवारी से। फिल्म संगीत कल आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, शाम 5:40 पर और रात 8 बजे। कल सुबह 8:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित राजन साजन मिश्र का राग ललित में ख्याल गायन। 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगी रजनी भास्कर। ढोलक पर इनके साथ संगत करेंगे वीरेंद्र अहिरबार, झींका पर बाबू रैकवार और बैंजो पर होंगे अशोक मस्ताना। 9:30 पर एक ही गीतकार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे गीतकार कौशल मुनीर के लिखे कुछ फिल्मी गीत। सुबह 10:05 पर होगा पत्रिका कार्यक्रम। इसमें कल आप सुनेंगे वार्ता, भारतीय सिनेमा में महिलाओं की हिस्सेदारी, वार्ताकार अनिल कुमार अहिरबार से और साथ ही होगी फिल्मी समाचार। दिन में 1 बजे महिला सभा कार्यक्रम में आप कल सुन पाएंगे वार्ता, योग और प्राणायाम का महत्व, वार्ताकार राम कुंवर पटेल से। साथ ही होगी उपयोगी जानकारी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल आप सुनेंगे दिन में 11 बजे बात आपके गीत हमारे, 12 बजे आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से, 1:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम, 2 बजे होगा फिल्म संगीत और 2:30 पर होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम कल आप आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से सुनेंगे। कल शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, वार्ताकार कमला पटेल से। साथ ही होगी रोजगार सूचना। शाम 6 बजे भोपाल से होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे धनीराम अहिरबार, झीका पर इनके साथ होंगे बाबू रैकवार, बैंजो पर अशोक मस्ताना और ढोलक पर संगत करेंगे वीरेंद्र अहिरबार। शाम 7:20 पर घरनी कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकमंजरी। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही होगी वार्ता, पीएम मुफ्त सूर्यघर योजना का लाभ और फायदे, वार्ताकार होंगे ब्रजेश कुमार पुष्पत से। और होगी आज की सीख। दिल्ली से कल आप सुनेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन और रात 10 बजे सुनेगा श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम संपन्न हुआ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को पुरस्कार प्रदान किए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और एआई से निर्मित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में नीमच में आयोजित कार्यक्रम में 2080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। श्री नड्डा ने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और भोपाल के मानस भवन में कल शाम 5 बजे काव्य पाठ और महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें भोपाल के कवि हरिवल्लभ, धूमकेतु मदन मोहन समर और उज्जैन के अशोक भाटी प्रस्तुति देंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
0: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
1: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
1: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
0: जी।
1: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
0: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
0: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी

0: शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाखणकड़ जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुंबसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है, बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधना, ले आया लकड़ी। इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है, हाँ नहीं तो। अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है

0: है तब तक आना बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे, अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सर आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चंपा।
1: क्या भूल में तुम बातें कर रहे हो ना?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्धू बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा
1: अम्मा क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा चुप्पा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी
1: चिल्लाया। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुआ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो।

0: साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
1: तेरे शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस।
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
1: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुपन नहीं मरना पड़े।
1: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोम का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अराड़ का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
1: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं।
4: अब चलो। ये देखो ये पेड़
1: देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो, इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा
1: क्या हुआ चुप्पा?
3: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया।
1: अरे दिखा दो
3: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
1: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा,
1: और नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
3: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है,
1: और वो वाला उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
3: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल।
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
3: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बना।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए।

0: आओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया,
1: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुपा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
1: लेकिन अम्मा,
3: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी।
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे।
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या।
3: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी।
1: बोला
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
4: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विनेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकधारा कार्यक्रम। इसमें आज कलाकार हैं पवन यादव। कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और सुनते हैं पवन यादव से ये बिलवारी।

दिलवारी आपने सुनी पवन यादव से। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं मुकेश रजक, पेंजो पर जब्बार खान और झींका पर बाबू रैकवार। लीजिए सुनिए पवन यादव के ही स्वर में ये चेतावनी।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
1: है
0: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: लीजिए अब सुनिए पवन यादव के स्वर में ये कजरी।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: लीजिए, सुनिए स्वच्छता पर केंद्रित ये लोकगीत पवन यादव से।

0: पोलियो के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, गोला।
2: लीजिए सुनिए ये कछियाई कलाकार पवन यादव से।
3: अरे घर है।

इसी चौकड़ियों के साथ लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे पवन यादव, इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे मुकेश रजक, बैंजो पर थे जब्बार खान और झींका पर संगत दे रहे थे बाबू रैकवार। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

श्रोता, हम आपको याद दिला दें, आज रात 8:15 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:15 पर दिल्ली से हम पेश करेंगे स्पॉटलाइट कार्यक्रम। 9:30 पर होगा पब्लिक स्पीक, दिल्ली से ही इसे प्रसारित किया जाएगा। और रात 10 बजे सुनिएगा श्रोताओं के डाक पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन।

कल शाम 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार होंगे धनीराम अहरवार। इनके साथ झींका पर संगत करेंगे बाबू रैकवार। बेंजो पर होंगे अशोक मस्ताना और ढोलक पर संगत करेंगे वीरेंद्र अहरवार।

हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुनिए कुछ गुमशुदा सूचनाएं। पहली गुमशुदा सूचना के रूप में हमें प्राप्त हुई है, गुमशुदा युवती का नाम है सुजाता शिवहरे। इनकी उम्र करीब 18 वर्ष है, रंग गोरा है, लंबाई 5 फीट है। ये दिनांक 1/6/2025 को रात्रि से लापता है। इनके बालों का विवरण सामान्य है, गुलाबी रंग का टॉप और कुर्ती उस समय ये पहन के गई थी, दुबला पतला इनका बदन है। इनके बारे में यदि किसी को भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक जालौन का नंबर है 9454-00279। नंबर एक बार पुनः 9454-00279। ये सूचना यहीं समाप्त होती है।

अगली गुमशुदा सूचना के रूप में हमें प्राप्त हुई है, गुमशुदा वृद्ध का नाम है हरभान सिंह तोमर। इनकी उम्र लगभग 71 वर्ष है। पिता का नाम श्री रुस्तम सिंह तोमर, ग्राम मडोरा, थाना कुठौंद, जनपद जालौन। ये दिनांक 10 सितंबर 2025 को समय लगभग 4 बजे शाम को घर से बिना बताए कहीं चले गए थे, जिनका लौटना अभी तक नहीं हो पाया। इनके हुलिया के बारे में यदि बात करें तो इनका रंग सांवला है, लंबा चेहरा है, नाक कान आंख औसत व लंबाई करीब 6 फुट है। उस समय इन्होंने सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा और सफेद साफी पहने हुए थे। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो थाना अध्यक्ष कुठौंद को आप संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9454-03600। क्षेत्राधिकारी जालौन का नंबर है 9454-01428। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोता, हम आपको याद दिला दें, कल सुबह 9:30 पर एक ही गीतकार में आप सुनेंगे गीतकार कौशल मुनीर के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। 10:05 पर होगा पत्रिका कार्यक्रम, इसमें कल आप सुनेंगे वार्ता भारतीय सिनेमा में महिलाओं की हिस्सेदारी, वार्ताकार अनिल कुमार अहरवार से। साथ ही होंगे फिल्मी समाचार। दिन में 1 बजे महिला सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता योग और प्राणायाम का महत्व, वार्ताकार राम कुंवर पटेल से। साथ ही होगी उपयोगी जानकारी।

कुछ ही देर बाद 7:20 पर हम पेश करेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रंगदूला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की, साथी होगी वार्ता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वार्ताकार होंगे विनीत कुमार जायसवाल और आज की सीख होगी

मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का किया उद्घाटन। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। यूसीसी समेत विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। 40 जिलों में अभी मॉनसून का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे को यहां से बिजली मिल रही है। श्री जोशी नीमच में आयोजित ऊर्जा पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1,553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि मध्यप्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है।
2: पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश ग्रीन पावर का, हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मैं शुक्ला जी को भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हर महीने आके मुझे मिलते हैं। जो भी हमारा स्कीम है, मुख्यमंत्री नाम से मुझे बोलते हैं, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो।

0: लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम कैबिनेट में अप्रूवल करके देते ही रहते हैं।
1: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर पावर यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे सस्ती बिजली अब नीमच में मिलेगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही, इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रकृति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 वर्ष में ये संबंध नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से परिभाषित होंगे। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमाइनी, सरकार और सेशल्स के लोगों को धन्यवाद दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लोकभवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल को मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, UCC को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन और इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना से भी अवगत कराया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को हाल ही में मिले GI टैग से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों, सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छतरपुर में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक आज जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयर हाउसिंग और नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की समीक्षा की गयी। पन्ना जिले में एक बार फिर एक आदिवासी किसान परिवार की किस्मत बदली है। यहां अहिर गवां क्षेत्र के एक निजी भूमि पर संचालित खदान से इस परिवार को 11.19 कैरेट का बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार को करीब 2 साल पहले भी 19.22 कैरेट का विशाल हीरा मिला था, जो नीलामी में 93 लाख रुपए में बिका था। हीरा कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मजदूर राकेश कौर ने इसी साल अप्रैल में पट्टा बनवाकर अपने 3 भाइयों दारुश के साथ मिलकर खदान लगाई थी। करीब 2 महीने पहले की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को उन्हें चमचमाता हीरा हाथ लगा, जिसे उन्होंने तुरंत सरकारी हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अब भी इसकी आमद नहीं हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम में तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खन्ना जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुड़ी रेंज के ग्राम आमा खुजरे में 105 हेक्टेयर वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई का जायजा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक

समाचार ने लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बर्डिया में लगभग 333 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बर्डिया महादेव मंदिर मार्ग, आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र और राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास और आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खंडवा जिले की 7 शासकीय आईटीआई संस्थाओं में 1480 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण और वनों के संरक्षण तथा हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने आज आयोजित टीएल बैठक में वर्षा काल में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। मैहर में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सेफ क्लिक अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन फटे फटे पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा।
2: हाँ जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
4: कूल रहो।
5: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सबरे भैया बेनन खां आनंद भैया की दो हाथ जोड़ के राम राम पहुंच जावे। भैया बहन और शुरू से हम आशा करते हैं कि हमारे सभी भैया बहन राजी खुशी से हुई है, उनके सभी काम अच्छे से चल रहे हुई है और संगे संगे अपने जो लड़का बिटिया है भी स्वस्थ हुई है और उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही हुई है। ऐसे ऊपर से बाले से भी प्रार्थना करते हैं। भैया बहनों अपन देख रहे हैं कि गर्मी कसके पड़ रही है कि नहीं, काय पड़ रही है जहां बात अपन जाना थे काय से भैया जो पर्यावरण है वो अपन सभी जने बर्बाद कर रहे हैं। आजकल का हो रहा है कि कहूं पे पहले जैसा मौसम नहीं रहा है, अपन देख रहे हैं कि कम कम पे अभी तक पानी नहीं गिरवाए और कैसे हो रहा है भैया अपन ही की लापरवाही से। और आज अपन यही से भैया अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस मना रहे हैं। भैया बहनों अपन को बता रही है कि उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि भैया जो अपनी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास आवे वाली जो जगह होते है उन्हें क्या होते हैं उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच आउत है उष्ण कटिबंधीय। उन्हें क्या होते पंचभारों के होते फिर तेज गर्मी पड़ा थे और संगे संगे कम कम पे अनावश्यक रूप से तेज बारिश भी हो जाते है और अपनो देश जो भारत देश है वो भी उन्हें आउत है। और भैया ऐसा मौसम हो रहा है कि बिल्कुल कछु नहीं कह रहे, बस अपन से जो ही कह भी कि अपना पर्यावरण अपन बचा के रखें और उनको एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। अब भैया बस कार्य का मौसम आवे वाला है और कम कम तो भैया पानी का मौसम आ गया है तो अपन से जो ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाए और उनकी सुरक्षा करें जब तक वो एक बड़ो वृक्ष न बन जावे। भैया बहनों अपन अगर भी बतकाव कर भी पता न रुक के
1: कैंसर हो

0: हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासिया एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
2: पंचवैयारो खेती किसानी अपन करत हैं और खेती किसानी में कई प्रकार के ऐसे काम होते हैं जो अगर सही तरीके से ना करे जाए, सोच समझ के ना करे जाए तो नुकसान होते हैं। ऐसे भैया जब अपन बुवाई करत हैं तो बीज का बहुत महत्वपूर्ण बताओ गए है। ऐसे भैया जब भी अपन बीज लिया है, प्रमाणित बीज लिया है और उखा बीजोपचार जरूर करें। बीजोपचार करे से भैया कई प्रकार के फायदे हैं, फसल अच्छी होते है और फसल में रोग से भी बचाव होते है। तो हम जो क्या हुआ भैया कि बीजोपचार जरूर करें। और भैया एक चीज अपन कर सकते हैं कि संगे संगे अपन सहतूत की खेती भी कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि सहतूत से भैया कई प्रकार के काम होते हैं। बस जरूरी रात है सही प्रकार से जानकारी की, और जानकारी के अलावा भैया नियम तरीके से, नियमबद्ध से, सावधानी पूर्वक और सोच समझ के खेती करवो। अगर भैया अपन ने नियम को पालन करो, सोच समझ के खेती करो तो क्या हुई भैया उसे अपन का नुकसान ना हुई है और आगे जाके निश्चित रूप से अपन का लाभ हुई है। भैया बहनों अपन बताई गई बातों को ध्यान रखें। अब अगारू बतकाओ कर भी पत्ता ना रुक के।
0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासिया एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
2: पंचवैयारो अपन जानते हैं कि आज सोमवार है और सोमवार के दिन हम जानते हैं हमारे भैया बहन बिल्कुल रेडियो लेके और मोबाइल को ऐप खोल के बाट ही रहे हैं काय खिलाने अपना पसंदीदा कार्यक्रम वंतु लसुन में खिलाने। तो बिल्कुल भैया श्रोताओं के पत्रों और ईमेल और फेसबुक पेज पे आधारित आज को रमतुला कार्यक्रम है। बुंदेली लोकगीतों को जो फरमाइशी कार्यक्रम है जो उनकी प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। तो भैया बहन सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम रमतुला। भैया बहनों आज को रमदूला कार्यक्रम हम लेके आए हैं। तो सबसे पहला कार्यक्रम सुनने वाले सबरे भैया बहन खां आनंद भैया की तो यहाँ जोड़ के राम राम पहुँच जावे। भैया बहनों अपन सभी जने जानत हैं कि रमदूला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार खां दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में करी जात है। और भैया बहनों इको प्रसारण वही दिना सोमवार खां ग्राम सभा कार्यक्रम में करो जात। और जोन भैया बहन कार्यक्रम में फोन लगाबो चाहूत है बे इन फोन नंबर के लाने लिख लिए हुए। बे फोन नंबर है 241588 और 29 80 29। छतरपुर से हैं बाहर के भैया बहन एसटीडी कोड लगा के फोन लगाएं। एसटीडी कोड है 076 82। भैया बहनों आज तकनीकी खराबी के कारण हमारे रमतुला के फोन रिकॉर्ड नहीं हो पाए जो उनके लाने हम अपन सबसे क्षमा प्रार्थी है। तो भैया बहनों अपन सभी जने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और चलते हैं कार्यक्रम के पहले लोकगीत की तरफ। भैया बहनों कार्यक्रम को पहला लोकगीत है ज्योति जाटो की आवाज में जब विवाही गारी। ई विवाही गारी का सुनबे के लाने अपन सबने कछु चिट्ठियां डाली हैं और कछु ईमेल से भी चिट्ठियां मिली हैं। और वे चिट्ठियां हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा, ग्राम खकल, तहसील कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से आकाश विश्वकर्मा और विकास विश्वकर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मेंडी, सौरभ, साधना और निवान शर्मा, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और बिलिस डिकेस्ट्रो, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तो चलो भैया बहनों अपन सबकी पसंद पे सुनत है ज्योति जाटों की आवाज में विवाह गारी।

ज्योति जाटव की आवाज में जब व्यवहार गारी। और अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाउत है और चलत है कार्यक्रम के दूसरे लोकगीत की तरफ। और कार्यक्रम को दूसरा लोकगीत है चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में श्रृंगार लोकगीत। भैया बंधनों, ये लोकगीत खास सुनने के लाने उन सबने चिट्ठिया भी डाली है और कछु ईमेल से भी चिट्ठिया मिली है। और वे चिट्ठिया है राजकोट गुजरात से रश्मि और भरत कुमार, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक और संदीप व संजय, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और सुनीता साहनी, ग्राम दुर्गापुर मऊरानीपुर जिला झांसी उत्तर प्रदेश से अजय खरे, अमन खरे और परिवार वाले, ग्राम बीरों जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से देवेंद्र पटेरिया, साधना पटेरिया और कामना। पंचभैयारो देखो, फेसबुक से भी अपन खा कछु पत्र प्राप्त भये है, जिनमें सुरेश राठौर गांधीनगर गुजरात से, किरण चंद्र नाथ मिडिल वीडियो श्रोता असम से, ग्राम व पोस्ट गोना कुसमार थाना सोजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, राम देवी नामदेव, ब्रजेश देवी नामदेव, अखिलेश देवी, लखनलाल चाइना, आकाश सुरभि और पायल नामदेव। तो भैया बहनों चलो, अपन सबकी पसंद पे सुनत है चंद्रभूषण पाठक जी को गाओ जो श्रृंगार लोकगीत।

भैया बहनों, आप अपन सभी जने सुन रहे थे चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में जो श्रृंगार लोकगीत। और अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाउत है और चलत है कार्यक्रम के तीसरे लोकगीत की तरफ। और भैया बहनों, कार्यक्रम को तीसरा लोकगीत है राम कुमार प्रजापति और संगी साधीन को गाव जो भजन। भैया बहनों, यही लोकगीत सुनने के लाने अपन सबने कछु चिट्ठिया डाली है और वे चिट्ठिया है खटकियाना मोहल्ला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सरमन लाल रेखवार, हीरा लाल, राजू संतोष और खेमराज। राघवेंद्र नगर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से लाखन सिंह, दीपक, राहुल और लक्ष्मी देवी। अमानगंज मोहल्ला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हीरा लाल राठौर, कन्हैया लाल राठौर और परिवार वाले। तो भैया बहनों, चलो चलत है और सुनत है राम कुमार प्रजापति और संगीत साधीन को गाओ जो लोक भजन।

भैया बहनों, अब अपन सभी जने सुन रहे थे राम कुमार प्रजापति और संगीत साथियों को गाओ भजो लोक भजन। और भैया बहनों, अब अपन चलते हैं कार्यक्रम के चौथे मतलब अंतिम लोकगीत की तरफ। और कार्यक्रम का चौथा लोकगीत है रज्जू राजा चौहान की आवाज में जा जीवनार गारी। भैया बहनों, यही लोकगीत सुनने के लाने अपन सबने कछु चिट्ठियां डाली है और भी चिट्ठियां हैं। नरसिंहगढ़ पुरवा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से मंगलनाथ लखेरा, कमलेश, अनुज, चिंकी, जानकी और शकुंतला देवी। बड़ा मलेरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से नेहा शुक्ला, जतिन और परिवार वाले। ग्राम लोगासी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से कट्टूबाई पटेल, संतोष पटेल, राहुल, आशा, विशाल, सिमांगी और सारहंस। जिला बारा राजस्थान से सुरेंद्र वर्मा, रेखा, मुस्कान और यश। देवकुलिया जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रक्षा पटेल, आरएन पटेल और परिवार वाले। तो भैया बहनों, चलो अपन सबकी पसंद पे सुनते हैं रज्जू राजा चौहान की गाई भैया जीवनार गारी।

भैया बहनों, अब अपन सभी जने सुन रहे थे रज्जू राजा चौहान की आवाज में जा जीवनार गारी। तो भैया बहनों, जी भाई, आज के रमतुला कार्यक्रम के लोकगीत। अब बात आउट है अगले रमतुला कार्यक्रम में अपन कौन कौन से लोकगीत सुनत हैं उनकी एक झलकी। अगले रमतुला कार्यक्रम की पहली झलकी है रामनाथ अहिरवार जी को गाभो जो पर्यावरण।

0: भैया बहनों, इन्हीं झलकियों के संगे आज को रमतुला कार्यक्रम संपन्न होते है। अगले रमतुला कार्यक्रम में अपन सभी जने फिर मिलवी अगले सोमवार खा, जब लो आज्ञा देव अपने आनंद भैया का। जय राम जी की। भैया बहनों, अब अपन सभी जने सुन रहे थे कार्यक्रम रमतुला, प्रस्तुतिया थी रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। और अपन का अब सुनवाओ थे एक मौका की वार्ता, प्रधानमंत्री फसल योजना वार्ताकार हैं विनीत कुमार जायसवाल जी। भैया बहन सुने जा वार्ता।
1: राम राम किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पेड़ के बारे में जो कम पानी में ही पल जात है और सालन तक अपन का आमदनी देत है, और सरकार उ किलाने खेती के लाने बढ़ावा भी दे रही है और अनुदान भी देत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। तो भारत सरकार ने किसानन की आय के बढ़ावे के लाने बांस की खेती और बांस आधारित उद्योगन का बढ़ावा देत के लाने राष्ट्रीय बांस मिशन चलाओ है। जय योजना अपन का 2006-07 में शुरू करी गई थी, ठीक है, पर बाद में इका मजबूत और बनाओ गो। और ई को मुख्य उद्देश्य जो है कि बांस उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन से किसानन का जोड़ने हैं। तो बांस की खेती कौन से किसानन के लाने अपन का फायदेमंद है? तो सबसे पहले बांस एक ऐसा पेड़ है जो 30 से 40 साल तक उत्पादन दे सकत, और दूसरी फसलन के साथ में इको उपयोग भी करो जा सकत। एक बार पेड़ लग जाए है तो उखा अपन 10 कन तक उगा सकत हैं। तो बांस तेजी से भी बढ़त पौधा है और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका देत है। तो अपन कौन कौन सी भूमि में बांस के पेड़ लगा सकत? अब मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र के हिसाब से वर्षा इत पे सीमित होत है, तो उस हिसाब से बांस बहुत

अच्छी फसल है, जहाँ दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी, काली मिट्टी, पथरीली मिट्टी सब प्रकार की मिट्टी में हो सकत है। बुंदेलखंड रीजन के हिसाब से कटंग बांस जो है अपने यहाँ पे विशेष रूप से सफल रहे। अब मध्य प्रदेश के लाने जो मुख्य रूप से प्रजातियां हैं उनमें कटंग बांस है, बंबूसा बालकोआ है, बंबूसा नोटांस है। अब बांस जनरली अपन का है बरसात के मौसम में रोपण करते हैं और 60x60 सेंटीमीटर के गड्ढा खोद के 15 से 20 किलो तक उनमें खाद भरते हैं। उसके बाद 4x4 मीटर की दूरी में जनरली अपन लगा देते हैं उनका। अब सरकार इनमें का है 50% की किसान का सहायता दे रही है सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में। तो उके लाने अपन किसान भाई इनका कछु जानकारी दे को चाहते हैं। तो इनमें सबसे पहले अपन जो अपने जिला उद्यान की विभाग है या कृषि विभाग है ऐसी केंद्रन पे जाके अपन का पूरी योजना की जानकारी लेने, फिर अपन का जमीन के जो कागज है उकी तैयारी करने। तो उनमें अपन जैसे खसरा होगा, आधार कार्ड होगा, बैंक खाता होगा, मोबाइल नंबर होगा, जो जानकारी अपन किसानन के बारे में दे सकते हैं उखा देने हैं। फिर अपन का जैसे प्रमाणित नर्सरी से अपन का पौधा लेने, पौध के रोपण लेने, फिर परियोजना की उकी DPR रिपोर्ट रहे थे सो अपन का बावनवाने DPR रिपोर्ट में कर रहे थे कि अपन को जितो खर्चा है बांस की खेती करे में तो उकी जानकारी पहले से देने है कि हमारे लगभग इतनी जमीन में इतो बांस हम उगा सकते हैं, तब जाके अपन को बैंक से अपन का सब्सिडी या ऋण मिले है। इन्हें कहा है कि बांस की खेती में पहले 2 साल ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि इन्हें जैसे बांस को पेधा अपन ने लगाओ तो दो अच्छो पानी लगे उनमें, ठीक है, निराई गुड़ाई हो अच्छे से, उखा पोषण मिले। और खेती जैसे अपन बांस की कर रहे तो उ बीच में अपन उनमें अदरक हो गई, अश्वगंधा हो गई, अरहर हो गई, इकी अपन इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बांस का बेचवे के लाने बाजार की जानकारी अपन का पहले से रहो चाहिए। अगर एक से ज्यादा किसान समूह में अगर काम करें तो इनमें सबसे बढ़िया रहते हैं। अब इनमें अनुदान कैसे मिले अपन के किसानों का, तो उकिला ने कहा है कि सरकार ने क्रेडिट लिंक बैंक एंड सब्सिडी की व्यवस्था करी है। अब सुनने में तो जो बहुत कठिन लगा था पर समझने में बहुत आसान है। अब जैसे मान लो अपन खेत में बांस की खेती चालू करवो चाह तो इनमें बांस रोपण हो गयो, पौधा हो गयो, गड्ढा खुदाई हो गई, खाद सिंचाई हो गई, रख रखाव में लगभग कितो लागत आते उको एक अपन का अनुमान लगा लेने कि लगभग 50,000 मान लो आ रहे अपन का। तो इनमें सबसे पहले अपन किसान जो है जिला उद्यान की विभाग में जाते है और राज्य बांस मिशन कार्यालय में आवेदन करते है। अब परियोजना अगर आपकी स्वीकृत हो जाती है तो उनमें 50,000 तक को आपका ऋण मिल है जितनी आपकी अनुमान लागत है। लागत डायरेक्ट किसानन का नहीं मिलत है, सरकार का करत है। इनमें जो बैंक है संबंधित बैंक उनमें किसान के नाम के 50% अनुदान पहले जमा करत है और 2 साल के बाद में एक बार जब आपको परीक्षण हो जाए है कि खेती आपकी सफल हो रही कि नहीं हो रही उसके बाद में बा 50% और दे दे है। तो यानी कि 50% सब्सिडी आपका गवर्नमेंट दे है और 50% आपका अपनी लागत लगाने पड़े। इस प्रकार से जब सब्सिडी में अनुदान काम करत है। अब मान लो अगर आपकी परियोजना असफल हो जाए, कई किसानन का है कि भैया पहली बार बांस लगा रहे और मान लो खराब ही हो जाए बिल्कुल से, तो इनमें का होता है कि बांस की खेती पूरी एकदम से तो पूरी खराब नहीं होती है कि बिल्कुल ही खराब हो जाए, कछु परसेंट खराब होते हैं, मान लो 20% है, 30% है, तो आधो अनुदान तो सरकार ने दे ही दो है 25%, 12,500 रुपया लगभग। अब 12,500 जो बाकी बकाया है तो उनमें अपन का किसानन के बारे में देखा था कि कितने परसेंट खेती बची, मान लो 50% बची तो 6,500 और दे है सरकार, तो वो कितनी बची है उसके हिसाब से अनुदान बाकी बकाया वालों मिलत है। अब मध्य प्रदेश में कहां से अपन बांस की नर्सरी से अपन बांस के पौधरोपण खरीदें, तो अब जैसे अपने आसपास में बुंदेलखंड रीजन में होगा वो अपनों जैसे टीकमगढ़ में है हाईटेक नर्सरी है तो उतर से ले सकत, सतना में होगा वो तो उतर से ले सकत, तो जो कहें उचित दर पे मिल जाते और अपन का पता है कि ई किस्म की अपन की बांस है, बाजार में की प्रकार की बांस की मांग है उस हिसाब से अपन लगा सका। अब जैसे किसानन के लाने मध्य प्रदेश में का सुविधाएं हैं विपणन के लाने या शोरूम के लाने, तो कहे किसान के लाने सबसे बड़ा सवाल रहे थे कि उत्पादन तो कर ले भी पर बेच भी कहां हम ही खा, तो इस समस्या के लाने
राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बहुत सारे बांस के शोरूम स्थापित करे गए, जैसे बुंदेलखंड में अपनों

0: होगा, सपना होगा, रीवा होगा, ठीक है, हरदा भी आत है, और इके अलावा भोपाल, इंदौर, बालाघाट, मुकुंदपुर, इनमें कहा है बांस के शोरूम संचालित हैं, जिनमें घरेलू उपयोग की वस्तुएं हो गई, फर्नीचर होगा, सजावटी सामान होगा, टोकरी होगा आदि हस्तशिल्प की उत्पाद की बिक्री होती है। तो इन्हें कहा है कि कुटर उद्योग के माध्यम से बांस के आधारित जो जितने अपने सामान हैं वे किसान अपन बेच सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें बांस की खेती में लगभग आय कितनी हो जात, किसानों को सवाल जो रहे थे, तो इन्हें बांस का है कि एक दीर्घकालीन निवेश है, पहले 2 साल तो पौधा विकसित हुआ है, फिर चौथे पांचवें साल से जाके कटाई शुरू हो, तो इन्हें कहा है अच्छी प्रबंधन की व्यवस्था करने पड़त और नियमित आय प्राप्त कर सके 4-5 साल बाद किसान, तो ई किलाने अपन व्यवस्था करते हैं कि 30-40 साल तक लगभग बांस की खेती होते है। तो जो 3-4 साल के बीच में अपन का है कि इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से कहूं अरहर लगा लो, अदरक लगा लो, अश्वगंधा लगा लो, ताकि अपन का बीच बीच में आय मिलत रहे और अपनों गुजर बसर चलत रहे। बांस की खेती में ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं कि अपन सबसे पहले प्रमाणित नर्सरी से अपने पौध लेवे, दूसरी बात का है शुरुआती सालन में सिंचाई की व्यवस्था करें, तीसरी बात का रखना है कि पौधन का जानवरन से बचावें, चौथी जा कि बिना बाजार की जानकारी के बहुत बड़े क्षेत्र में अपनी की रोपण ना करें, पता चलो अपने आसपास कोनो बाजार ही नहीं है और अपन लगाए हैं 10-15 एकड़ में, तो कहे लंबो नुकसान हो सकत किसानन का। पांचवी बात की जिला उद्यान के अधिकारी या कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेते रहें। अब जैसे हम आपका बताइए सफलता की कहानी, चुंदरेल खरगोन की बंजर पहाड़ियन में हरियाली की कहानी है जा। खरगोन जिला में सुंदरेल गांव में जिस दीपक गोयल जी रहे, तो उन्हें अपनी मेहनत से साबित कर दो कि यह योजना बंजर जमीन तक में सोना उगल सकत, तो उन्होंने कहा करो कि राज्य बांस मिशन की सहायता से लगभग 150 एकड़ पथरीली भूमि में वृक्षारोपण करो बांस को, आज उस भूमि पे बांस की पौधे लहरा आ रही। कहा करो कि अगरबत्ती निर्माण इकाई भी स्थापित करी, जिसे गांव की महिलाएं हो गई तो उन्हें रोजगार मिल रहो, ऐसे में वे दर्जनन परिवार का रोजगार दे रहे। अब इसे हमें कल निष्कर्ष मिला था किसान भाई बहन का कि राष्ट्रीय बांस मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि किसानन की आय बढ़ावे के लाने और रोजगार पैदा करवे के लाने और पर्यावरण संरक्षण करे के लाने एक मजबूत माध्यम है। हम अब यही आशा के संग सभी किसान भाई बहनों से कहवो चाहते हैं कि बांस मिशन की जानकारी को लाभ उठावें और बांस की खेती कछु तो बढ़ाएं। अब चलो हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।
1: पंच भाई और सभी जाने सुन रहे थे वार्ता प्रधानमंत्री फसल योजना, वार्ता कर रहे थे विनीत कुमार जायसवाल जी। और भैया बहनों देखो अब हो रही है चलवे की बेरा, सो चलवे के पहला काल के कार्यक्रम सुनने जाए। काल अपने पंच भैया सुने लोक मंजरी कार्यक्रम, श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पे आधारित बुंदेली लोकगीतों को जो कार्यक्रम हुई है, प्रस्तुति हुई है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। काल अपन एक वार्ता सुने पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना का लाभ एवं फायदे, वार्ताकार हुई है ब्रजेश कुमार पुष्पत जू। आज की सीख में अपन सुने जो जिए सो खेलें फाग। भैया बहनों देखो जोई के भी कि अपन सभी जने अच्छे से काम करें, जीवन में अच्छे काम करने से हमेशा अच्छो होत है। और अपने तो बतका हुई है भैया बहनों, अब हो रही है चलवी की बेरा, सो दियो अपने आनंद भैया का विदा, पंचो राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम। मोबाइल ऐप प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है।

0: कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिन की यात्रा आज समाप्त हुई और प्रधानमंत्री आज दोपहर स्वदेश लौटे। और ये यात्रा महत्वपूर्ण इस तरह से थी कि सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और इसके अलावा भारत और सेशल्स के राजनयिक संबंधों का ये 50वां वर्ष भी रहा। आज हम इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो सबसे पहले हम इसी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरा है और विकास के सहयोगी के तौर पर भारत एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है, सेशल्स की यात्रा में आपको इस संबंध में क्या नजर आया?
4: देखिए, भारत और सेशल्स के बीच में संबंध पिछले 50 सालों में हमने देखा है कि वो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर नहीं है। उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम ये है कि भारत सेशल्स के लिए चाहता है कि वो हिंद महासागर में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो या आर्थिक सुरक्षा संपन्नता को लेकर हो, सामुद्रिक सुरक्षा हो, इन तमाम आयामों पर सेशल्स ऐसी स्थिति में रहे कि वो न सिर्फ अपने ऊपर आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके बल्कि क्षेत्र में भी, हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी वो इन चुनौतियों का सामना करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। तो मल्टीलैटरल एस्पेक्ट में भारत की कोशिश रही है कि सेशल्स एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका निभाए, तो ये दूसरा उसमें आयाम है। तीसरी एक चीज है कि भारत ने हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि हम जानते हैं कि महासागर नीति जो पहले सागर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका आगाज पहले किया था, अब वो महासागर नीति में, उसमें भी हम देखते हैं कि महासागर नीति के तहत उद्देश्य ये है कि जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, छोटे जो हिंद महासागर के और बड़े पैमाने पे अगर हम कहें कि ग्लोबल साउथ के जो छोटे द्वीपीय देश हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी जरूरतें जो है, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, इन देशों की जो आकांक्षाएं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनको दूर करना और उनको एक हाशिए से उठा करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये भारत की नीति रही। तो भारत और सेशल्स के संबंधों में ये साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया कि हम साथ चलते हुए हम अपने संबंधों में भरोसे और भरोसे के साथ सहयोग और सहयोग से आज हम जन कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें प्रधानमंत्री की विजिट में भी दिखता है और भारत सेशल्स के संबंधों में भी दिखता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत के जो भी, अगर हम लिस्ट ऑफ एमओयूज को देख लें या पिछले तमाम वर्षों में भारत ने जो सहयोग सेशल्स के लिए किया है वो सेशल्स की जरूरतों पर केंद्रित रहा है। और ऐसा वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक ने भी कहा कि भारत सेशल्स संबंध सेशल्स की जरूरतों को ध्यान में रखे, और यही मुझे लगता है इस द्विपक्षीय संबंध की बड़ी खास बात है।
3: तो कैसे आप देखते हैं किस तरह से भारत सेशल्स के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और जिस तरह से सहयोग भारत ने रखा है वो कैसे मदद करेगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में?
4: एमओयूज की जहां तक बात है उसमें क्षमता को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारे एमओयूज में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेशल्स के सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन अफेयर्स में, या फिर वो ICAR और सेशल्स की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके बीच में सहयोग हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा आयाम है इन संबंधों का। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेशल्स के लिए एक बड़ी जरूरत है, तो वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भारत ने काम किया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार, मुझे लगता है, किसी देश के साथ संबंधों में जन कल्याण की बात कही,
3: बिल्कुल,
4: और वो इसलिए है कि सेशल्स के लिए न सिर्फ एक नया सेशल्स नेशनल हॉस्पिटल बनेगा इस एमओयू के तहत, बल्कि

0: वो तमाम जेनरिक दवाएं और मेडिसिनल सप्लाईज जो है वो जन औषधि स्कीम के तहत सेसल्स को दी जाएंगी। तो एक तरह से हमें दिख रहा है इन एमओयू के तहत कि बड़ा ही समेकित एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग और एग्रीमेंट्स का इन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। जहां तक लाइन ऑफ क्रेडिट का सवाल है, उसमें भी एक बहुत जो 175 मिलियन की बात तमाम बार दोनों देशों के नीति निर्धारकों के बीच में बातचीत में भी आई और मीडिया में भी तमाम ये खबरें आई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है जिसमें 125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, 50 मिलियन ग्रांट के तौर पे दिया जा रहा है। तो सेशल्स की जो आर्थिक क्षमता है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन एग्रीमेंट को ये रूप दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, सेशल्स एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है, जिसकी तटरेखा बहुत बड़ी है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की उनकी तटरेखा है। तो उसके लिए स्पेस सैटेलाइट एप्लीकेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग उस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट इमेजरी के क्षेत्र में, ये मुझे लगता है कि सेशल्स की क्षमताओं को एक बड़े नए स्तर पर पहुंचाएगा, जिससे सेशल्स हिंद महासागर में भी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं, चाहे वो पायरेसी को लेकर हो या ड्रग ट्रैफिकिंग नार्कोटिक्स को लेकर हो या गन रनिंग को लेकर हो, उनमें भी सेशल्स की क्षमता बढ़ेगी तो हिंद महासागर में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी, जो दोनों ही देशों के लिए और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: आइए सुनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशल्स के संबंधों और समुद्री सुरक्षा के बारे में क्या कहा।
2: अवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस रिफ्लेक्ट अवर शेयर्ड कमिटमेंट टू ए सेफर एंड मोर सिक्योर रीजन। आई मेट प्रेसिडेंट अल्बेनी टोपाथ दिस मॉर्निंग। अवर विजन इज कैप्चर्ड इन द आइडिया ऑफ महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी and growth across regions Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को दूसरे देशों के साथ मजबूत करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और सेशल्स जैसे देश इसमें कितनी बड़ी एक साझेदारी की भूमिका निभा सकते हैं?
0: देखिए, भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से हिंद महासागर के क्षेत्र में, भारत की रणनीति सबसे पहले तो ये है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों के इतर भारत ये चाहता है कि इस क्षेत्र में सभी देश, सभी मित्र देश एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और सभी मिलकर कॉमन सिक्योरिटी पर काम करें, कोऑपरेटिव पीस के उद्देश्य पर काम करें, जिससे कि ये क्षेत्र न सिर्फ स्थिर रहे बल्कि शांति भी इस क्षेत्र में बनी रहे। इसलिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इस लिहाज से बहुत जरूरी है, और महासागर के कॉन्सेप्ट में सेशल्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है जितनी की मॉरिशस या मालदीव्स या श्रीलंका की है। तो इस लिहाज से महासागर नीति के तहत भारत का जो उद्देश्य है, भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि सभी का विकास हो, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो ये सारी चीजें इस नीति में हमें दिखती है। महासागर के लॉन्च होने के बाद 2025 में, सागर नीति को 2015 में लाया गया था, 2025 में उसे अपग्रेड करके महासागर नीति का रूप दिया गया। तो पिछले एक साल में हमने देखा है कि तमाम जो हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देश हैं उनके साथ सहयोग में इस बात को बड़ी मुखर तौर पर कहा जा रहा है कि सभी देशों की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट्स में काम करना है। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि एक इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड, पीसफुल और स्टेबल ऑर्डर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने।
1: जी, सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को अपने संबोधन में रेखांकित भी किया था, तो उस संबोधन से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों को आप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगे?
0: देखिए, एक खास पहलू भारत और सेशल्स के संबंधों में वहां पर मौजूद भारतीयों और भारतवर्षियों का योगदान है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, एनआरआईज है, और जो हमारा डायस्पोरा है वहां पर, वो 8-10% की संख्या वहां पर टोटल पॉपुलेशन में देता है और उनका योगदान बहुत प्रमुख है। पहले तो वो 1770 में जब पहली बार भारतीय सेशल्स पहुंचे तो वो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, वो खेतों में और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे। लेकिन आज भारतीयों का कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं डायस्पोरा के साथ साथ एनआरआईज को भी जोड़ूंगा, वहां सेशल्स में एडवांस जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हो, सिविल इंजीनियर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं या वहां के सिविल

0: सर्वेंट्स, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीयों का योगदान बहुत प्रमुख है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित किया। साथ ही साथ जो भरोसे की नींव पर आधारित जो ये संबंध है, इसमें ये जो तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, जो सेशल्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमेशा से भारत से चावल सेशल्स को जो है वो भेजा जाता है, कभी कभी वो एक्सपोर्ट के तौर पर, बहुत ऐसे भी ओकेजन आए जब भारत ने चावल सिर्फ जो है वो सहायता के लिए भेजा। सेशल्स जैसे देश आज जलवायु परिवर्तन और बहुत तेजी से बदलती हुई ये जो क्लाइमेट डिबेट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे जूझ रहे, उनकी इन तमाम जो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटीज है उनसे लड़ने में भारत क्या योगदान दे सकता है, दोनों देश मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि 50 साल का सफर हमने तय कर लिया है, अब आगे आने वाले 50 सालों में हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि सेशल्स को लेकर एक बहुत दूरगामी नीति बनाने की बात उन्होंने कही, और इसमें सेशल्स के नीति निर्धारकों का, सेशल्स की जनता का और सेशल्स में रह रहे भारतवर्षियों का भी योगदान उन्होंने मांगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा ही व्यापक और इंक्लूसिव एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे सेशल्स की जनता और वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ने बड़े ही खुले मन से स्वीकार किया।
1: जी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, सेशल्स की अब हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो इन देशों में जो अपने रणनीतिक संबंधों में भारत विकास का जो एक क्षेत्र लाया है और सहयोग और जनकल्याणकारी जो साझेदारी है इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे भारत अपने एक सकारात्मक प्रभाव को इन देशों के साथ प्रस्तुत कर रहा है और कैसे विश्व में ये एक संदेश भी जा रहा है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ एक विकास का प्रबल सहयोगी बनकर उभर रहा है।
0: जी, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश है, खासतौर से ये हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश है, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, उनकी कॉप की जो मीटिंग्स हैं उन पर, इन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है, जो इन देशों की जनता के जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, मछली पालन का, क्योंकि इलीगल और अंडर रिपोर्टेड फिशिंग को लेकर के IEUU जिसे कहते हैं, उसको लेकर के चिंताएं बहुत सारी है। तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है। भारत को जैसा कि हम जानते हैं दुनिया की फार्मेसी समझा जाता है, लेकिन आज सिर्फ अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है कि जनता, जो जन औषधि योजना जो भारत में लागू हुई, ये दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं, जिन्हें दुनिया के अग्रणी जो विकसित देश हैं उनसे कोई चिकित्सा से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित, दवाओं से संबंधित, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो समर्थन, जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आज भारत उसको मुहैया कराने की स्थिति में है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि इन तमाम देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी ग्लोबल साउथ एक ऐसे स्तर पर, ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जहां वो अपनी बात को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह सके, ना कि सिर्फ जो अभी तक हमने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की डिबेट सुनी है, उसमें हमेशा ये होता है कि ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं कि हमें और फंडिंग दी जाए, हमें ग्रांट्स दी जाए, हमें एड दी जाए। आज भारत अपने इन तमाम ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के साथ ये कहना चाहता है, ये करना चाहता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक ऐसे इस तरह से एक दूसरे को एंगेज करें कि ये वन वे डोनर और रेसिपिएंट रिलेशनशिप से बदले और साउथ अपनी बात को, अपने मुद्दों को कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा असर्टिवली कह सके, और इसके लिए इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाना जरूरी है। यही अफ्रीका के देशों में दिख रहा है, यही पैसिफिक आइलैंड के जो तमाम जो छोटे देश हैं और हिंद महासागर में भी यही बात दिख रही है।
1: बिल्कुल, प्रोफेसर राहुल मिश्रा बहुत धन्यवाद। भारत और सेशल्स के संबंधों पर आपने विस्तार से विश्लेषण रखा और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ इन संबंधों को लेकर जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन

0: AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में
2: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। गाइड फिल्म का गीत सुनिए। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में, गीत शैलेंद्र का है, संगीत SD बर्मन साहब का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ को हम किसी से कम नहीं फिल्म में इस गीत के माध्यम से। गीत था मजरू का, संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। लीजिए अब सुनिए प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत है संतोष आनंद का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसको संगीतबद्ध किया है।

प्रेम रोग फिल्म के संगीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। कुछ और फिल्मी गीत आप सुनेंगे रात 10 बजे मन भवन कार्यक्रम में। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं समाचार संध्या बस कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पहले हिंदी में आप समाचार सुनेंगे और बाद में अंग्रेजी में।

0: स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार

0: गंगा जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी

0: किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance

0: मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत एमएसएमई क्षेत्र है। एमएसएमई न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश। आपका स्वागत है डॉ रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी।
1: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो है वहां उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की

0: होती है तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेट्रल मांगते हैं
1: जी।
0: और कोलेट्रल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेट्रल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है।
0: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेट्रल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
0: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहां गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशन हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो

0: कृपया CGTMSC का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSC जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो,

0: विपिन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है, उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं, तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
1: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं, इनको जेम से करना है। ये हमारे जीएफआर के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें, पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
0: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: जी
2: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेने का, तो कितने परसेंट उसमें ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
0: जी
1: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे सीजीटीएमएससी का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा
0: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
3: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्कार,
3: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
0: जी।
3: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
1: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहां पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी।

0: और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको ढाई गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पज ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
2: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग है जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
0: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमई हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ही हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता
1: है। और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स, तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी,
0: वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
3: संजीव मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: और जो एक्सपर्ट साहब हैं उनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो उस

0: एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेजी में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ, के जो मजदूर काम करते हैं उनमें और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती है?
1: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहां तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती है। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो है वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
2: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
1: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो वुमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए, कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी वुमेन एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया, और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
2: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
2: नमस्कार, सवाल पूछे।
3: जो लघु उद्योग, ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
1: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं, और हमारे MSMEs जो है वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि MSMEs की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि RBI रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-1806763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
2: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी।

0: कोको जी
1: हेलो
0: जी हाँ अपना सवाल हाँ, पूछे
1: हाँ नमस्ते मैडम
0: जी
1: हेलो
0: जी हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल
1: एक्चुअली अच्छा, हमारा ना बुटीक है
0: जी
1: सिलाई का तो उसमें हमारे पास दो कारीगर है क्या हमारे पास उसमें लोन मिल सकता है फ्लैट्स घर का है
2: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक पीएमई जीपी हमारी वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
0: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है उन्होंने पूछा है कि एमएसएमई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या
2: जी बिल्कुल एमएसएमई को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे एमएसएमईज को मिलता है और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
0: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनीश उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
2: देखिए उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं आपको एक पहचान मिलती है आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है ऑनलाइन है और ये पोर्टल हमारा इसमें हमारी एपीआई बैकिंग है जिसके अंदर हम जीएसटी इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकता है।
0: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
2: देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था ढाई साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूलकिट प्राप्त हो चुका है 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
0: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश आप आए हमसे चर्चा की इसके लिए धन्यवाद अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति नमस्कार
2: धन्यवाद प्रियंका।
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार।
4: मोबाइल ऐप प्रसार भारती न्यूज ऑन एआईआर और मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। आज का ये अंक आपके पत्रों पर आधारित है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम आपको सुनवाते हैं बाजीगर फिल्म का गीत अलका याग्निक विनोद राठौर की आवाज में। गीत देव कोहली का है संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने पसंद आप सबकी है। ग्राम पोस्ट मामना जिला हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर से मणिराम पाल मलखान सिंह पाल सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजा है राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नर

नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने ग्राम मिर्तला जिला महोबा से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, नीरेंद्र सिंह, गुरु महाराज, गौरव और जाह्नवी राजपूत। यह अगला पत्र है वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति और प्रयाग चौधरी का। चार मीनार चौक गणेर पढ़रिया से पत्र आया है दरियानमल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम और अनिराज मोटवानी का। झूलेलाल चौक तिल्दा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला दीदी। यह अगला पत्र है मेहरनगर महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, राही, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश और समत गवहाणकर परिवार। इसी गीत के लिए पत्र भेजा है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट ने। यह अगला पत्र है गांव बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका और प्रोनामिका, उत्कर्ष और समस्त नेताम परिवार। इसी गीत के लिए पत्र भेजा है बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेवकार, श्रीमती वनीता, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनुरथ हल्ले, लल्लू और ऋषि रेकवार का। आप सबकी पसंद पर आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत बाजीगर फिल्म से।

चलिए रुक करते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अलका याग्निक की और कुमार सानू की आवाज। गीत है राहत इंदौरी साहब का, संगीतबद्ध किया है विजू शाह ने। पसंद आप सबकी है। मामूलवाड़ी तालुका नादुरा से पत्रा है सोपान तायडे, विजया तायडे और अमोल आणी सरिता तायडे का। आदर्श नगर मलुर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ और शाइना शर्मा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। कोटावा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से पत्र आया है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। यह अगला पत्र है शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां, वसीम नूरजहां और वली उल्लाह नूरजहां। राजनंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। यह अगला पत्र है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री का। इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजा है मोरटक्का माफी, जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल ने। यह अगला पत्र है जिला रायसेन खापरखेड़ा से तुलसी राम साहू, मुकेश कुमार साहू, आरती, ममता और गोमती का। नवागढ़ कटई से पत्र आया है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांता वर्मा, सीमा शारदा, दामनी और समस्त वर्मा परिवार का। आप सबकी पसंद पर यह गीत।

अगला गीत आप सबने सुनना चाहा है माशूक फिल्म का, जिसे आवाज दी है अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत है गौहर कानपुरी साहब का, संगीतबद्ध किया है श्याम सुंदर ने। पसंद आप सबकी है। छत्तीसगढ़ भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल। प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। चंडीगढ़ से पत्र आया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। अगला पत्र है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर और प्रशांत प्रजापति।

का वैष्णव कॉलोनी सनावत से पत्रा है मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अलतमश खत्री रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नूपुर ऋषिका और रॉबिन इस गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम पजोनिया तहसील कोंच जिला जालौन से सत्येंद्र चंसोलिया ने हमें यह पत्र लिख भेजा है। यह अगला पत्र है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन का। ऊपरकोट बुलंदशहर से पत्र आया है मोहम्मद सईद अब्बासी परवीन अब्बासी शहनवाज अब्बासी फरदीन अब्बासी और समस्त परिवार के लोग। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से पत्र आया है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का। अगला पत्र है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल और बिट्टा बजाज। अगला पत्र है सेक्टर 8 भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर पिमला श्याम कुंवर दीपक श्याम कुंवर और ज्योति श्याम कुंवर। आप सबकी पसंद पर माशूक फिल्म का ये गीत।

चलिए रुक करते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है मेजर साहब। गीत को आवाज दी है उदित नारायण ने और गीत और संगीत दोनों आनंद राज आनंद के हैं। पसंद आप सबकी है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, किरण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इस गीत को सुनना चाहा है नया पारा भिरई से बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज, ईश्वर राज, श्री चंद्रकांत, कुमारी प्राची, कुमारी ट्यूशी और समस्त सूर्यवंशी परिवार ने। रेलवे कॉलोनी से पत्र आया है जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डांगला परिवार का। बेमित्रा नयापारा से ईश्वरी प्रसाद साहू, श्रीमती भावना साहू, नीलेश कुमार साहू और श्रद्धा साहू। कटघोरा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल सिंह, श्रीमती शकुंतला, मनोज पाल सिंह, लखन पाल सिंह, दिनेश पाल सिंह और कुमारी कविता इसी गीत को सुनना चाहती हैं। अगला पत्र है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉ रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। ग्राम पंचायत बठेना से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और समस्त परिवार के लोग हैं। गांव बुड़गन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामचरण प्रजापति, चंदेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, मिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसरे इसी गीत को सुनना चाहते हैं। अगला पत्र है छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन से अमित तिवारी, श्रीमती पूजा तिवारी, पंडित राम बिहारी शास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया, अभय कार्तिक और समस्त तिवारी परिवार। अगला पत्र है दसमले चौक परतूर जालना से जयश्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना काटे, आकांक्षा काटे और दसमले और समस्त काटे परिवार। बिलसराय से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम, गोल्डी, दीप्ति, अनुज और ओमली चक्रवर्ती। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, दिव्यांशी, रेनू, रोनिका और समस्त यादव परिवार। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मास्टर मयंक और तंबी गौहर। धाम मोहल्ला पन्ना से कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू। आप सबकी पसंद पर मेजर साहब फिल्म का ये गीत।

और लीजिए अब सुनिए मोहरा फिल्म का गीत अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीतबद्ध किया है इंदीवन ने। पसंद आप सबकी है। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े और हनुमान बोखड़े। सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम और अदीबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, कुमारी डब्वाली डोम, कुमारी डब्लू डोम और सैफुद्दीन डोम। अगला पत्र है बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मूडत और मयंक मूडत, चेतन नाहटा का। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, मास्टर मुनीर खान, अब्दुल सत्तार अब्बासी और समस्त परिवार के लोग। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। अगला पत्र है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और सरोजनी और कुंती साहू। बटेंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग इसी गीत को सुनना चाहते हैं। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। आप सबकी पसंद पर मोहरा फिल्म का ये गीत।

लीजिए सुनिए सातवां आसमान फिल्म का गीत उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, माफ कीजिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीत है सूरज सनी का, संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने। पसंद आप सबकी है। मोहाल दीवानपुरा राठ जिला हमीरपुर से विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री देवी, प्रेम रानी, दिव्या, नीलम देवी और छोटा बाबू कुशवाहा। गुरु नानक पार्क मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी, आरती, नीति, तनीश और समस्त सेतिया परिवार। चिमनी पहाड़गांव थाना ईशानगर जिला छतरपुर से बालचंद कुशवाहा, हीरा कुशवाहा, गोले, भागवती, कुमारी आकृति और हनुमत कुशवाहा। ग्राम गौना कुशमाड़ जिला ललितपुर से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रजेश देवी, अखिलेश देवी, लखनलाल, चाहना, आकाश, रानी, परी नामदेव, सूरबी नामदेव और समस्त नामदेव परिवार। अगला पत्र है चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सौद्रा वर्मा, आयुष और कृत वर्मा। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। अगला पत्र है राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झाविंद्र कुमार वर्मा। अगला पत्र है कुरसेंडा जालौन से गोविंद सिंह भदौरिया, प्रभंजन सिंह और विक्रांत सिंह भदौरिया। पलेरा जिला टीकमगढ़ से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव और संजीव यादव इसी गीत को सुनना चाहते हैं। आप सबकी पसंद पर यह गीत।

अभी आप सुन रहे थे सातवा आसमान फिल्म का गीत उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में। लीजिए सुनिए सनम फिल्म का गीत कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज, गीत समीर का, संगीतबद्ध किया है आनंद मिलंद ने। पसंद आप सबकी है। क्रम रजोनी जिला महोबा से उदयवान पाल, दीक्षा पाल, जय हिंद, प्रतीक्षा, बिमलेश और समस्त परिवार के लोग। ग्राम गुना जिला टीकमगढ़ से राजाराम मेहरवा, राधेलाल, प्रवीण, श्रीमती शारदा, कुमारी दीपा, सीमा, निशु, राखी और समस्त हरिवार परिवार। ग्राम पोस्ट पापेट जिला सागर से अशोक, कमल, नामदेव, मदन, अनुरत, तुलसी, राकेश, प्रकाश और राजा नामदेव। ये अगला पत्र है शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव, राधिका और दीपिका सैनी का। इसी गीत को सुनना चाह है वलीदपुर मढ़हा मऊ से राजेंद्र कुमार भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि और अनुराग दीप का। मृतला जिला महोबा से सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, रश्मि, दीपिका, सुषमा, देवांश भास्कर, नंद किशोर और ब्रज नंदन इसी गीत को सुनना चाहते हैं। यह अगला पत्र है ग्राम पवई जिला हमीरपुर से किन्ना बाबू कुशवाहा, बलराम, रामरतन, अभिजीत, नंदनी, अंशिका, शिवेंद्र, नरेंद्र और समस्त कुशवाहा परिवार। इसी गीत को सुनना चाह है ग्राम अलगीडाड़ जिला कोरबा से जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष, अतुल, श्रीमती फूलजी यादव और समस्त यादव परिवार। ग्राम मृतला जिला महोबा से रामजीवन राजपूत, राममिलन, भूरा, सूर्यांश, ऋषिकांत और समस्त राजपूत परिवार। पीपुरपारा पालचुआ मुगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। अगला पत्र है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। इसी गीत को सुनना चाह है बनुसा दरियापुर जिला अमरावती से राजेश चौहान, संदीप, किशोर, सचिन और समस्त चौहान परिवार ने। आप सबकी पसंद पर यह गीत।

लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए बहार आने तक फिल्म का गीत पंकज उदास अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में। गीत है इब्राहिम अश्क का, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन साहब ने, पसंद आप सबकी है। तिलक नगर कोंच जिला जालौन से अनीसुल्ला मंसूरी, कैशर जहां समीउल्ला मंसूरी, नसीमा बानो, वेजी मंसूरी, शन्नू बाजी और मेहनाज मंसूरी इसी गीत को सुनना चाहती हैं। ग्राम मामना जिला महोबा से सोहन सिंह राजपूत, भैया एलके राजपूत, आकाश सोनम, प्रियांशी और एसएस राजपूत इसी गीत को सुनना चाहते हैं। अगला पत्र है गायत्री मोहल पनवाड़ी जिला महोबा से शिव नारायण पांचाल, देव नारायण, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, पवन, अनुज गुड्डी और अंकुश पंचाल इसी गीत को सुनने के लिए हम पत्र भेजा है। ग्राम कनाय

और करतल जिला बांदा से सत्यप्रकाश अहरवाल, ठाकुर दीन माता दीन राम हेतु प्रकाश रामरतन बाबूराम रजनीश रविशंकर लेखराम लाला भैया शिव किशोर राम मिलन राजकुमारी किरण बबली ज्योति प्रभा देवी पूजा दीपा सुशीला अर्चना रचना नैना और समस्त परिवार के लोग। अगला पत्र है अबार माता रोड रामटोरिया जिला छतरपुर से बहादुर चक्रवर्ती नंदकिशोर श्रीमती शीला श्रीमती जसोदा बड़े भैया हरिराम बड़े भैया दशरथ काजुल करण मोहिनी गोलू बाबू आयुष और समस्त परिवार के लोग। गांव बड़बोजी जिलागढ़ से रघुनाथ मालवी भवरबाई रीना मालवी सुषमा दुर्गा परी और मधुबाला और समस्त परिवार के लोग। अगला पत्र है ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे विशाल कुमार धनजे शीला और गायत्री धनजे का। गांव बड़बूजी से राजकुमार डूडी सरजीत सिंह प्रमोद कुमार डूडी हांसी शहर से राजू मिगलानी बबीता सुभाष योगी और डब्बू और बब्बू। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है ननौरा श्रीनगर से बलराम दास शहरवार श्रीमती कस्तूरी कुमारी आराधना सोनिका उपमा और नैतिक वर्मा ने। अगला पत्र है इंद्रपाल सिंह राजपूत चंद्रपाल सिंह देवी सिंह उम्मेद कुंवर उर्मिला प्रेम कुंवर नेहा अंकिता देवी अभिता देवी आरुषु देवी अरिंद सिंह और अनीस सिंह राजपूत का। हमें लिख भेजा है ग्राम हरपोड़ा मरिया जिला टीकमगढ़ से। अगला पत्र है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारणी सूरज सुजला ज्योति और रियांश ठाकुर। जंटपुरा पनवाड़ी से पत्र आया है देवी दीन अहरवार सुनीता देवी दिनेश कपिल पूजा एवं समस्त अहरवार परिवार का। आप सबकी पसंद पर आज के इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत बाहर आने तक फिल्म का।

इसी गीत के साथ मनभावन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पहले आप हिंदी में सुनेंगे और बाद में अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50

0: वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of our armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honoured with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations.